0: सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 टू 13 कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को कॉल 972-666-1181 मेंशन फन एशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ
1: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड
2: एक्सक्यूज मी इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल
1: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल
2: ओके देन Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा. फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
7: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
6: K2 ड्राइव मतलब
7: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
6: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
7: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route. Rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
10: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
11: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.
12: व्हाट्स अप लेडीज? Have you met my friend Harry?

गुड इवनिंग फर्नीचर रेडियो, सुन रहे हैं आप ये 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मेरा शो ऑन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं हूं नवनीता और ये जो वक्त रहता है आपके साथ मैं बताती हूँ, ये शाम ही फ्राइडे की ऐसे लगने लगता है कि द वीकेंड हैज़ ड्रॉप्ड एंड इट डेफिनेटली हैज एंड आई नो यू ऑल इन अ ग्रेट ग्रेट मूव डूइंग स्टफ गोइंग आउट, चोर्स भी कर रहे हो तो भी मज़ा आता है क्योंकि टेंशन फ्री चोर्स कर रहे होते हैं। फिल्में आती हैं फ्राइडे को, सो दिस इज अनदर मूवी विच इज़ कमिंग एंड दैट इज जेलर, जेलर 2 आ रही है और एंटिसिपेशन हो रहा है। ये जो फिल्म है ना रजनीकांत की फिल्म जो आई थी पहले जेलर एंड उसका सीक्वल बना है, और पहली वाली जेलर में भी काफ़ी सारे सरप्राइज फैक्टर्स थे, सरप्राइज अपीयरेंसेस ऑफ स्टार्स अपने फिल्म इंडस्ट्री से। 2023 की ब्लॉकबस्टर फीचर्ड एक्टर्स लाइक तमन्ना भाटिया, मोहनलाल, शिव राजकुमार एंड जैकी श्रॉफ कैमियो रोल्स में वो आए थे। अभी भी जेलर 2 में ऐसा सुनने में आया था कि शाहरुख खान कैमियो रोल में आने वाले हैं, लेकिन बहुत ही पोलाइटली ये स्टेप्ड अवे फ्रॉम इट। तो हलबली खलबली सब कुछ मच गई थी एंड अब सुनने में आ रहा है ये कैमियो रोल जो है ऋतिक रोशन करने वाले हैं एंड ये एक बहुत ही पिविटल स्पेशल अपीयरेंस है इन दिस एक्शन थ्रिलर जो जेलर का सीक्वल है, जेलर 2 रजनीकांत का फिल्म, एंड इट इज़ एक्साइटिंग टू सी दैट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग इन मे बी ऋतिक रोशन। हाउ एक्साइटिंग, हाँ।

छत्रपाल भी ये गाना सुने ना, दिस फील सो गुड. सैयारा सेंसलिया का ये राजशेखर का म्यूजिक है, एंड दिस वॉज इन द वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा. पता है ये तो हमेशा होता है, आप कोई भी किसी के कोई लेडी का बालों के बारे में आपने कमेंट कर दिया, वाओ यू हैव सच ब्यूटीफुल हेयर, एंड द आंसर इज ऑलवेज लाइक सेम, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यू शुड हैव सीन व्हेन आई वाज यंग, इससे डबल बाल थे. ऐसा क्यों होता है? मतलब द कॉम्प्लीमेंट दैट यू कैन जस्ट टेक इट, यू डोंट, एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर योर पास्ट व्हेन एक्चुअली यू हैड मोर हेयर. एंड इट हैपेंस यार, लाइफ के साथ साथ हेयर, बॉडी, स्किन, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन कोर्स, टेक्स इट्स ओन टर्न. और जो यूथ होता है 20s, 30s से जो 50s, 60s में, डेफिनेटली कुछ तो बदलता है, पर हमारी यादें वहीं भटकती रहती हैं कहीं ना कहीं.

Beautiful. Bahut hi sundar gana. This one from the film Dharandar just touches your heart. Beautifully sung as well. And you are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Shashwat Satinder Sartaj. Very, very interesting made song together. 9722355555 is studio ka number. वैसे किसी ने कॉल किया पूछा ये गाने का नाम क्या है. जाइए सजना इज द म्यूजिक सॉन्ग नेम. शाश्वत सचदेव का म्यूजिक है एंड गाना गाने वाले सतिंदर सरताज और जैस्मिन शैंडलेस है एंड ब्यूटिफुल मिक्स दिस सॉन्ग विच टचेज योर हार्ट. 104.9 FM Funija Radio सुन रहे हैं और ये लगाने के बाद एक छोटे से ब्रेक लेंगे फिर बताती हूँ आपको हाल क्या है. मौसम मौसम है या मौसम में कुछ हेर फेर है.

Beautiful from the film Sonu Ke Titu Ki Sweetie. किसी ने कहा, प्रिय मित्र, एक काम करना, थोड़ी सी मिट्टी लेना, उससे दो प्यारे दोस्त बनाना, एक तुझ जैसा, एक मुझ जैसा, फिर उनको तुम तोड़ देना, फिर उससे दोबारा दो दोस्त बनाना, एक तुझ जैसा, एक मुझ जैसा, ताकि तुझ में कुछ कुछ मैं रह जाऊं और मुझ में कुछ कुछ तुम रह जाओ, कुछ तुम जैसा, कुछ मुझ जैसा।

Once upon a time in Mumbai, Pritam ka music and Prachi Desai's name, Imran Hashmi, Pilu, that lovely music and song. वैसे awesome है मौसम, 70s में temperature है अभी, 73, that is, it gets low at night and in the mornings and during the day, definitely gets very hot, जैसे कि 90s में पहुंच जाता है, humidity भी बहुत, at 72 degrees, so muggy it was, ऐसा लग रहा था, बारिश होनी चाहिए, because everything was sticking, I mean, humid, very very humid and hot, so that makes the weather very very muggy and वैसे ही कल भी लग रहा है Saturday 91 high 73 low like today exactly partly cloudy रहेगा 14 miles per hour पे हवाएं चलेंगी so हवाएं are also not so very strong so it's just hot days Sunday सनी होना चाहिए राइट और सनी ही है 93 हाई के साथ 73 लो बट द क्लाउड्स आर डिसअपीयरिंग देयर इज अ लॉट ऑफ सन ऑन संडे शुरुआत ऑफ द वीक मंडे अगेन 92 हाई 71 लो पार्टली क्लाउडी रहेगा एंड टेरिफिक ट्यूसडे को पार्टली क्लाउडी अगेन विथ 90 हाई 70 लो सो दिस एंटायर वीक जो हम बारिश सोच रहे हैं ना नहीं होने वाली मझधार ऑफ द वीक में भी वेडनेसडे ऑल्सो 87 हाई 70 लो मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे गिर रहा है 70s में आ रहा है विद पार्टली क्लाउडी टेम्परेचर्स थम्स अप थर्सडे एज वेल थोड़ा टेम्परेचर और नीचे आ रहा है 86 हाई एंड 71 लो एंड फ्राइडे को फाइनली स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स हैं 87 हाई 72 लो बारिश की थोड़ी बहुत स्कैटर्ड संभावना है एंड दैट्स हाउ लेटर इन द वीकेंड द टेम्परेचर्स लुक लाइक सो जो बारिश थी छतरी वतरी कहीं पर भी बारिश हो रही थी इस हफ्ते ऐसा नहीं नज़र आ रहा है सो दैट इज़ योर टेक फॉर दिस वीक इन्जॉय द वेदर टिल इट लास्ट 100 के पहले पहले ही जब 70 आ जाता है रात और सुबह दैट ऑटोमेटिकली फील्स सो गुड सो दैट्स हाउ डैलस इज मूडी है डैलस का टेम्परेचर बट येस देर आर टाइम्स वेन यू कैन इन्जॉय विच इज़ द लेट नाइट्स And the early mornings.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नवनीता। दोस्तों पता है देसी मंडी द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन। देसी मंडी हैज अमेजिंग ऑफर्स। क्रेविंग मोर फॉर लेस दिस वीक हैज यू कवर्ड। मंडे एंड वेडनेसडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस। ट्यूजडेज एंड थर्सडेज बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स। एवरी वीक डे 5 PM टू 9 PM नो मिक्स एंड मैच। TNCs apply. More flavor, more savings all week long. DC Mandi located in Louisville, Texas. सुन रहे हैं 104.9 FM। एक गाने की फरमाइश आई है, होता ऐसा है कि आप गाना बजा चुके हैं एंड बस दैट ट्रिगर्स अ डिफरेंट मेमोरी, दैट डिफरेंट म्यूजिक, दैट डिफरेंट थॉट। सो DJ की रिक्वेस्ट है, उनकी रिक्वेस्ट पर ये गाना आपके लिए है।

0: 104.9 FM फर्नीचर रेडियो, यही गाने के साथ मैं घोड़े पे सवार होकर निकल रही हूँ आज की शाम. मिलूंगी अगले हफ्ते 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अपना शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे लेकर आने वाले हैं आपको एंटरटेन करने. प्रेम जोशी जो हमेशा आते हैं एंड ही डज अ ग्रेट शो, 8 से 10 दीजिए उनका साथ आप अपने साथ और दीजिए मुझे इजाज़त. पता है इट टेक्स द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज टू बी पॉजिटिव. Use your energy to think positive and positive things will happen. Good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright. Bye-bye for now.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Documents ya parcel bhejni hai?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Such an amazing song, such a cult classic song, यार अलीशा चिनॉय का गाना, एंड ऑफ कोर्स मिलिंद सोमन भी थे इसमें. यार मुझे जब भी मैं ये गाना देखता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आती है. अब लोग सोचेंगे ये गाने से तुम्हारे बचपन का क्या कनेक्शन है. यार हम बचपन में जब छोटे थे शिवाजी पार्क जाते थे हम बॉम्बे में, वी यूज टू गो आउट एंड प्ले क्रिकेट देयर. एंड मिलिंद सोमन एवरी संडे यूज टू कम एंड जॉग फॉर लाइक 2 hours. And I'm not joking, like 2 hours literally he used to jog. And he used to always come and say hi, and also used to play with us cricket for like 5 minutes or 6 minutes and go back to his running. Now, and you can imagine the dedication that he has. It's not from today, yesterday, or 5 years. It has been for 40 years straight. And you can see it. He still looks so fit and fabulous, right? Bahut mehnat lagti hai yaar. हमको लगता है कि यार ये लोग इतने अच्छे कैसे दिखते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गेट्स बिहाइंड द सीन्स. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग. 972-235-5555, दिस इज आरजे प्रेम. यूजुअली मैं मेरा शो करता हूँ हर संडे 8 से लेके 10 बजे तक. या आई ऑलवेज एंड द वीकेंड विथ सम ऑप्टिमिज्म, सो आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं. रबी का गाना है तेरे.

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, परी हूँ मैं गाना सुनीता राव का रेकमेंड किया था हमें केतकी ने. सो केतकी, आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग. आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड.
1: फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप. फॉर मोर देन 40 इयर्स द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप. फॉर मोर देन 40 इयर्स रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम. रॉड बिलीव्स इन सेफर नेबरहुड्स, स्मार्टर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली वैल्यूज दैट मेक्स फ्रिस्को स्पेशल. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो.
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन You keep going back to all under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
8: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8823464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
11: Astrology readings for guidance only and results may vary.
12: Hey maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
12: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
13: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
12: क्यों?
13: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
12: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
3: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
13: Your new destination has arrived.
14: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Chokha to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
15: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग. आज मेरा दिल बहुत बड़ा है यार देवी और सजनों. अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हो तो यू हैव अ चांस टू विन ए गिफ्ट कार्ड, ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फनेशिया. आपको सिर्फ मुझे ये बताएं, जो अभी हमने ये गाना सुना, ब्लॉकबस्टर गाना छल्ला फ्रॉम द मूवी जब तक है जान, हु इज द सिंगर, लेट मी नो. जो सबसे फटफट एकदम फटाफट मुझे सही जवाब देगा वो ये गिफ्ट कार्ड जीत लेगा फ्रॉम द अमेजिंग फन पिज्जा किचन. राइट, 972-235-5555 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. मुझे बता दीजिए ये गाना किसने गाया था और गिफ्ट कार्ड ले जाइए यार.

शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का अमेजिंग ब्रेथ टेकिंग म्यूजिक. दिल चाहता है द आइकॉनिक मूवी, द कल्ट क्लासिक मूवी ऑन फ्रेंडशिप. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर हैविंग अ ब्यूटिफुल लेट इवनिंग, लेट संडे. संडे बोलने की बहुत आदत हो गई यार. लेट फ्राइडे इवनिंग विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस. I hope you're enjoying the songs that we are playing so far. If not, let us know your jam. 972-235-5555. And if you like our show, follow us on social media. Prem Joshi Podcast. PremJoshi Podcast. We talk to some of the amazing subject matter experts from immigration, law, realtor, doctor, police officers, career counselors. We talk to everybody. So you will definitely find it interesting. 972-235-5555. Next Gana is recommended by Radha. This is one of the very special songs that I really like. The movie is not that great. The pairing was a little bit awkward. But I love this song. ये एक ऐसा गाना है जो आप गाड़ी के शीशे एकदम नीचे कर दो, वॉल्यूम ऊपर कर दो और जस्ट एंजॉय करो. सो If you can do this right now, because most of our listeners are listening to us in a car, so this is something that I highly recommend you try. Jaona from What's Your Rashi.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
3: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
7: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दो तीन गाने आ चुके हैं एकदम बैक टू बैक, वो भी 10 मिनट में बजाने, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू टू ऑल द कॉलर्स हु यू नो मेक आवर लाइव्स बेटर. टू बी ऑनेस्ट विद यू, 85% ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी प्लेड ऑन आवर शो वर रेकमेंडेड बाय आवर लिसनर्स. कैन यू इमेजिन दैट? यस. 9722355555 इज द स्टूडियो का नंबर. और नेक्स्ट गाना जाने से पहले, श्रुति आपका गाना नेक्स्ट है, बट उसके पहले मुझे बताना है अबाउट टेक्सास प्राइमरी केयर. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lanaxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lanaxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services all under one roof. Wow. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. No appointments needed. Texas Primary Care Clinic.
1: Artist हुए थे ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़ पीठ चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े. बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM.
1: Finance partner, AG FinTechs.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज़्ज़ा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज़्ज़ा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
8: Work with Club Fun Asia.
9: I'm loving the music.
8: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी डायग्नोसिस क्लियर है आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एजी फिनटैक्स फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com प्लान टुडे ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज
3: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.

0: Club Phanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

revolution and let the good times roll.

0: Lights, mic, Bollywood, Fanasia, Fanasia.
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: PVS मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना? आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बबुआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया,
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा।
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

Bringing South Asia closer, more closer. Fun Asia, 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे

0: माय गॉड।
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
0: पर क्यों?
1: क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
3: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे, नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह, प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
4: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
5: चिकन बनाना
6: ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaron families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Aaja meri gaadi mein baith ja.
10: Baith jao. पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो.
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
10: पर पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया। कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

बस आशिकों पे रहे।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo, dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
13: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
12: सच में, एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
13: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
12: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
13: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
12: नंबर बोल जल्दी।
13: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
14: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
15: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DFW.
16: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आपके के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपको और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूं कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहां मैं ले चलूंगी आपको कुछ उम्दा गीतों की ओर। बहुत ही मीठे तराने और खूबसूरत संगीत से सजाए हैं इस कार्यक्रम को मैंने, ऑल द वे टिल 10 AM। सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विथ सेइंग, व्हाट इज इन ए नेम, शेक्सपियर ने कहा था। A rose by any other name would smell just as sweet. A rose by any other name would smell as sweet. लेकिन हम सब जानते हैं कि नामों में बहुत कुछ होता है, right? एक नाम पहचान होती है, यादों का खजाना होता है, और कभी कभी पूरे personality भी होते हैं। As soon as you hear a name, है सब girl names, female names in this show all the way till 10 AM. Opening the show with one of my favorite songs, aur ye sawal bhi puchti hu aapse, aap agar pehchanenge is playback singer ka naam, batayenge mujhe 972-235-5555 pe.

फिल्म किताब से लिया था एक गाना जिनमें जिसमें धन्नों का जिक्र होता है और आवाज थी आरडी बर्मन की। और आपके कॉल्स के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुबह सुबह उठकर आप भी मुझे सुन रहे हैं। आई विल से बिग थैंक यू टू एवरीबडी हु कॉल्ड इन दैट अर्ली इन द मॉर्निंग। वेल विद दैट सेड, आज के गानों में है जिक्र कोई फीमेल का, फीमेल नाम का, तो अगर ऐसे गाने आपके जहन में हैं तो बताएंगे मुझे 9722355555 पे। व्हाइल आई टेल यू कि ड्रीम होम मॉर्गेज है ना, नाम सुनते ही आप समझ गए। वेल टॉकिंग अबाउट होम्स, टॉकिंग अबाउट मॉर्गेज एंड इट दे आर टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम होम। एंड वॉन्ट टू टेल यू कि ये बहुत लोगों के ड्रीम होम्स को, के सपनों को मतलब साकार किया है इन्होंने। दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। इसके अलावा ये बोलूंगी कि इनके पास ऑल 50 स्टेट्स के लाइसेंस हैं। इनके एक्सपर्ट टीम की खासियत ये है कि ये डिलीवर करते हैं स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। तो आप भी अपने ड्रीम होम को साकार करें। मेक योर ड्रीम होम ए रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। कॉल कीजिएगा इन्हें एट 972-245-5626। यदि आप घर बैठे फोन पर या लैपटॉप पर बैठकर, इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन एंड चेक आउट सम इंफॉर्मेशन, वेल गो टू dreamhomemortgage.com। फीमेल नेम्स इन ऑल आवर सॉन्ग्स टुडे, एनी स्पेसिफिक वन यू वांट टू लिसन टू, कॉल मी इन द स्टूडियो एट 972-235-5555।

बहुत ही क्यूट गाना है फ्रॉम द फिल्म जाने तू या जाने ना कभी कभी अदिति जिंदगी, बहुत ही क्यूट वाला विद ए आर रहमान्स म्यूजिक इन इट. थ्रू आउट द शो आई विल हैव सॉन्ग्स दैट विल फीचर अ फीमेल्स नेम. नाउ इफ यू हैव वन ऑन माइंड दैट यू वांट टू लिसन टू, डेफिनेटली गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555. और बॉलीवुड की फीमेल कैरेक्टर्स, यानी कि what I'm trying to say is कि कुछ बॉलीवुड कैरेक्टर नेम्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं हैं बट इमोशंस बन चुके हैं. कौन से हैं वो नाम जो आपको यू नो आप जैसे ही सुनते हैं रोल और ए रियली ए पर्सनैलिटी कम्स थ्रू इन योर माइंड. गिव मी अ कॉल, लेट मी नो. फिल्म के कैरेक्टर के नाम, ओके, फीमेल कैरेक्टर के नाम. 972-235-5555 is the number to the studio. I want to play this song about Anna. Anna, mere pyar ko na tum jhoota samjho jana.

आप सभी लोगों के कॉल्स के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप पसंद करें इस कार्यक्रम को। और एक बहुत ही बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद टू एजी फिनटेक्स जो हमारे लिए ये शो ला रहे हैं। एजी फिनटेक्स का नाम अभी आपने सुना होगा, आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं। वेल, फिर भी बताना चाहूंगी कि एजी फिनटेक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस और ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल बिजनेसेस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। गिव देम अ कॉल सो दैट यू कुड फील कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द फ्यूचर टू। द नंबर इज 469-942-9888 और यू कुड विजिट agfintechs.com। Female names in all the songs featured all the way until 10 a.m. on Music Mantras, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता।

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, और इन गीतों में हैं कुछ नाम, फीमेल नेम्स, क्योंकि नाम सिर्फ बुलाने के लिए नहीं होते, वो कहानियां भी सुनाते हैं। एंड विद दैट सेड, अगर जो आपके नाम पर कोई गीत बने हैं बॉलीवुड में, मुझे कॉल करके ज़रूर बताइए और मैं कोशिश करूंगी कि आपके नाम के गाने भी बजे आज। फीमेल नेम्स ऑल द वे अंटिल 10 AM। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग।

such a pretty song, Rani Mukherjee aur Saif Ali Khan ke saath. Liya film Tararampam se. Bahut hi pyara geet aur isme, of course, that was featuring Shona, the wonderful lady. More female names, or rather, all the songs featuring female names all the way until 10 a.m. Agar jo aapke naam pe koi geet bane hain Bollywood mein, मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा. आज कोशिश करूंगी आपके लिए आपके नाम का गाना बजाया जाए. राधा, इफ यू आर देयर. एक्चुअली राधा वाले बहुत गाने हैं, सो दिस इज द फर्स्ट वन. सो टू ऑल द राधाज आउट देयर, एंजॉय दीज़.

0: जले।
1: वेल, राधा कॉल्ड इन और कहा कि राधा वाला दूसरा भी तो गाना है। हाँ जी है, एब्सोल्युटली है, वो भी सुनवाएंगे आपको। बट राइट नाउ आई एम टर्निंग इन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग दैट इज redone, a remix, I would say, really revisited kind of track from yesteryears and really beautifully done. गाने के बोल हैं मधुबन में राधिका नाचे रे, but बहुत ही प्यार से, अच्छे से, खूबसूरती से बनाया है. Thought I'd share it with all of you. Enjoy the music.

0: आफरीन जी, उम्मीद करती हूँ आपने ये गाना सुना. थैंक यू फॉर मेकिंग द रिक्वेस्ट एंड वी ऑल एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. एंड आफरीन का मीनिंग आपसे पूछा था, वेल इट मींस प्रेज, इट मींस ब्रावो और वेल डन. इट इज ऑफन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अप्रिसिएशन, ऑल्सो एज अ नेम. इट कन्वेज ब्लेसिंग्स, एनकरेजमेंट एंड एक्सेप्शनल ब्यूटी. मीनिंग ऑफ आफरीन दैट वॉज. तो मैं आपसे पूछ रही थी कि कुछ बॉलीवुड कैरेक्टर नेम्स हैं, फीमेल नेम्स, जो कि आइकॉनिक बन चुके हैं. नाम नहीं है सिर्फ, इमोशंस भी हैं. तो उनमें से एक नाम मेरे पास आया, उन्होंने कहा सिमरन. तो ऐसे ही कुछ और नाम हैं बताएंगे आप मुझे. वैसे ये भी बताऊंगी कि जूली वाले गाने बहुत सारे हैं मेरे पास. कौन से हैं आपके जहन में जूली वाले गाने, वो भी बताइएगा ज़रूर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
9: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
10: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
9: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
10: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
11: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: And welcome back, a warm welcome back to Music Mantra. दोस्तों जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता, आपका मेरे साथ रहेगा 10 बजे तक. हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत. और आज के इस कार्यक्रम में सभी गानों में शामिल है फीमेल नेम्स. एंड ऑन दैट नोट आपसे पूछती हूँ, जूली का जिक्र हो किसी गाने में तो कौन से हैं वो? मेरे पास कुछ है गाने, बट आई वॉन्ट हियर फ्रॉम यू इफ यू रिमेम्बर. जूली का जिक्र हो जिस गाने में वो मुझे बताकर शेयर कीजिएगा एट 9722355555 व्हाइल आई प्ले राधा वाले गाने. एंड इफ यू थिंक ऑफ एनी आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर नेम्स लेट मी नो एज वेल. एक नाम आ चुका था मेरे पास एंड दैट वॉज सिमरन. सिमरन के अलावा कौन से नाम आइकॉनिक हैं इन बॉलीवुड कैरेक्टर्स? फील फ्री टू शेयर दैट एज वेल.
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है. बहुत सारे गाने आते हैं मुझे.
2: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन.
3: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया तोड़ निभाना.
2: तेरी बात

0: Dada?
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताऊँ।

0: राधा के नाम के बाद आपको याद दिला दूं एक और नाम, और वो है उमर ख्वाजा। और आप याद रखेंगे इस नाम को जब आपको पड़ेगी सख्त ज़रूरत, और सख्त ज़रूरत कभी कभी यू नो बुरे टाइम्स पे ज़्यादा आती है याद। तो याद रखें नाम ऑफ अटर्नी उमर ख्वाजा, इन केस यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट, या कभी हो जाता है भाई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट भी, तो अटर्नी उमर ख्वाजा आएंगे आपके लिए, आपके केस को फाइट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए कॉम्पेंसेशन ले आने के लिए, द वन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करनी है, वार्तालाप करनी है, यू टू डील विद देम, और उस स्ट्रेस को भी करेंगे ये आधा। सो रिमेंबर द नेम उमर ख्वाजा, एंड वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन। विथ ऑल दैट सेड, want to tell you to give them a call for a free consultation. Their number is 469-300-5046. Ya visit kijiye attorneyomar.com.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: We are now listening to one more Radha wale gana. And आपसे पूछ रही हूँ कि भाई जूली का जिक्र हो किसी गाने में, वो कौन से हैं गाने, बताएं मुझे 972-235-5555 पे। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर अवेक ड्राइविंग, यू आर अप एंड अबाउट, हैविंग अ ग्रेट मॉर्निंग, मेकिंग दिस मॉर्निंग इवन मोर ब्राइट विद दीज ब्यूटिफुल ट्रैक्स। एंड फॉर मी द मॉर्निंग गेट्स ब्राइटर व्हेन आई हियर फ्रॉम यू। सो इफ यू हैव अ सॉन्ग ऑन माइंड दैट फीचर्स जूली, let me know which one that is. 972-235-5555 is the number.

0: राधा बहुत ही पॉपुलर नाम, बट एज आई सेड अर्लियर, मैं जब रिसर्च कर रही थी इस कार्यक्रम के लिए, मुझे लगा सबसे ज्यादा पॉपुलर फीमेल नाम फॉर सॉन्ग्स इन बॉलीवुड इज जूली. अगर आपके जहन में कोई गाने हैं जिनमें जिक्र हो सिर्फ ऑल्सो ऑफ जूली, यू गोना कॉल मी एंड टेल मी विच वंस दोज वर. व्हाइल आई आंसर माय ओन क्वेश्चन, वेल आई जस्ट गॉट a message from my Radha and said, oh, I'm enjoying all the Radha songs. Well, thank you so much, Radha. I'm glad you're enjoying it. Well, so time for me to tell you about those fantastic names that are very iconic in Bollywood. Aur wo hain Simran. Simran kehte hi mujhe pata hai aapko yaad aa gaye, Raj aur Simran from DDLJ. उसके अलावा एक और नाम है जो बहुत ही पॉपुलर है और वो है अंजलि. अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है एंड अंजलि रायचंद फ्रॉम कभी खुशी कभी गम. और दोनों ही कैरेक्टर्स निभाए भाई काजोल ने. एंड काजोल एक्चुअली ब्रॉट दीज नेम्स आई थिंक इन द लाइमलाइट. एक और जो नाम है जो पॉपुलर हुआ वॉज गीत फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट, प्लेड बाय करीना कपूर एंड ऑल्सो बाय करीना कपूर वॉज पू. You remember that one with Hrithik Roshan and Kareena Kapoor?
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
0: All right, a shout out to all the Julies out there. I hope you will enjoy these next few songs. I'm trying to get them back to back. Julie naam ka zikr ho siraf. Aisa bhi kaha tha maine. Yaad hai? To is gaane mein hai wo. Any other songs on mind with Julie? 972-235-5555 is the number for you to let me know at.

जूली का रोल अदा किया जिनत अमान ने, और वहां से आपको ये पॉपुलर वाले गाने पे ले चलती हूँ। जब पूछा आपसे सवाल कि भाई जूली वाले कौन से गाने हैं, तो ऑल ऑफ यू गेव मी दिस वन वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द 80s। आई होप यू विल एंजॉय रिविजिटिंग दिस फन फन फन ट्रैक।

0: हमको ले ली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान।

0: किया ला ला ला ला ला ला हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया
1: थैंक यू हनी थैंक यू
0: हमको लेली नहीं मांगता हमको मैरी नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
2: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।
2: जूली अ पॉपुलर सॉन्ग इन बॉलीवुड सदियों से चला रहा है। 1973 से लेकर 2026 तक।
3: बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया

0: Julie, the very popular name in Bollywood. More songs lined up in just a second.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
0: Actually, I have this minute to talk to you about Tandoori Flame Restaurant. ये तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट है जो लोकेटेड है गार्लैंड में. वैसे बताना चाहूंगी कि जल्दी से जल्द अभी लाइक 11 बजे खुल जाएंगे. राइट नाउ दे आर क्लोज्ड. दे विल बी ओपन फॉर बिजनेस एट 11 AM एंड देन व्हेन यू गो यू विल कम आउट एंड से वेल दैट इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस स्पाइस लवर्स. तो वहां पे क्या मिलेगा? वेल दे हैव सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, दे हैव रिच करीज एंड ऑल ऑफ योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स with that home style punch. They have tandoori kebabs that are smoked, yani ki smoky tandoori kebabs. They have velvety curries.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objectives. Today, talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
5: Paid for by Mark Hill for Mayor.
6: Laptop, charger, coffee, phone. Oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
7: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
6: ओ गॉड, पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
7: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
6: कैसे?
7: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
6: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
7: या कैरेट लेन काइंड.
8: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
10: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
11: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
10: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
12: Tu rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi Louisville, Dallas ka sabse bada desi grocery store, jahan har desi ek roof ke niche. North se south, street se festive, har taste, har culture, ek hi jagah. Pure desi, full mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है।
17: करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस मॉर्निंग्स म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहता है हर शनिवार सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। ले आती हूँ हर बार एक अनोखी प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में ऐसे गाने जहाँ पे शामिल हैं कुछ फीमेल नेम्स। काफी सारे गाने हमने अब तक एंजॉय किए हैं आज के इस कार्यक्रम में। इन दिस फाइनल सेगमेंट आई हैव समथिंग डिफरेंट एज वेल। तो हमारे इस शो में हमने फीचर किए नेम्स लाइक धन्नो, अदिति, मारिया, आना, शोना, राधा, राधिका, आफरीन, किरण एंड देन इट वाज जूली। आज के इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए मैं कहूंगी शुक्रिया आपके कॉल्स का। नाउ इन दिस फाइनल सेगमेंट, ओके, बॉलीवुड names are never just labels, they become personalities, they become eras, they become memories. Aur yadi main kahun ki naam hai Leila, Chameli, Munni ya Sheila, to aap samajh hi gaye honge ki is segment ka personality kya hai. Well, it is definitely along the lines of some item numbers, some fun tracks. I hope you will enjoy these and बोलूंगी कि आई मे एज वेल जस्ट से इट राइट नाउ कि फिर एक बार ले आऊंगी एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे। फॉर नाउ एंजॉय दिस सेगमेंट विद आइटम नंबर्स और जस्ट फास्ट ट्रैक सॉन्ग।

एक नाम में पहचान होती है, यादों की खजाने होते हैं और कभी कभी पूरी पर्सनालिटी का एहसास भी होता है. यू नो व्हेन यू थिंक ऑफ अ सर्टेन नेम, यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ पिक्चर इन योर माइंड ऑफ दैट पर्सन. व्हेन यू थिंक ऑफ अ नेम दैट यू हर्ड ऑफ और यू हर्ड ऑफ अ पर्सन एंड यू नाउ नो द नेम, यू गोइंग टू एसोसिएट दैट पर्सनैलिटी विथ देम. जैसे कि बॉलीवुड के कैरेक्टर्स हैं सिमरन, अंजलि, गीत, पू. आई नो यू ऑल नो दीज नेम्स. दीज आर आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर नेम्स. काजोल मेड सम ऑफ दीज नेम्स रियली रियली पॉपुलर. नाउ अबाउट नेम्स, यू नो नेम्स ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रेंड्स, नेम्स ऑल्सो टॉक अबाउट एन एरा. एक जमाने में कुछ ऐसे नाम थे रेखा, सुजाता वगैरह. You'd know that it was in the 70s. Then those changed. And as I said, some of them became popular in the 80s and 90s thanks to Bollywood. Aur phir aaye naam jaise ki Myra, Zaira, you know, things like that. Those are trending and those basically also tell you. So say about 10-15 years from now, when you hear the name Myra, you're going to think of, you know, the times in the 2025-26 era. So names also make you think of the time capsule, pretty much, right? If you have something to add to this commentary, in the next, say, 8 minutes, give me a call and let me know. If you have a song on mind that has your name written on it, you are going to let me know. Now, there are some names that, have been trending or have been popular for a long, long, long time. And इस नाम को लेकर बहुत गाने बने हैं, ओरिजिनल से लेके इतने रीमिक्सेस बने हैं. I'm going to share with you a snippet of the original and then bring it to the latest edition of the name. You tell me. Easy peasy. So give me a call. Tell me at 972-235-5555. Here, enjoy this.

And with that, a shout out to all the Monicas out there, and Monica, a name that has been around forever and in many cultures. And कहते हैं ना कि नाम पहचान होती है और साथ में कहानियां भी उन नामों के साथ यादगार बन जाती हैं. और बॉलीवुड ने हमें ऐसे नाम दिए हैं जो कि दिलों में बस जाते हैं. इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम जो है म्यूजिक मंत्र वो भी आप याद रखते हैं. तो याद रखिएगा कि ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे सुबह ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। जी हाँ, जस्ट चिल में मेरा और आपका साथ होता है सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद क्योंकि आने वाला है बहुत इस्तेमाल करेंगे आप इस नंबर को। एंड द नंबर इज 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM व्हिच वाज ऑल अबाउट आइटम सॉन्ग्स। सो लॉट्स ऑफ फन नंबर्स आउट देयर। एंड सैटरडे जस्ट चिल कमिंग बैक टू जस्ट चिल होता है ट्रैवल सेगमेंट। और आज मैंने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, एक ऐसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं जो हर किसी की बकेट लिस्ट में होती है। एंड कुछ मज़ेदार फैक्ट्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी आइटनरी बना पाएं कि भाई सिर्फ ये नहीं वो जगह भी देख सकते हैं। सो यस, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की। सो अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, कुछ सुनहरी यादें हैं जो करना चाहें शेयर, तो ज़रूर कॉल करिएगा। द नंबर इज़ 972-235-5555।

Taken from the movie Chandni, that was Aage Aage Chale Hum and Piche Piche Preet. Well, आपको मैं AG Fintax के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपको tax related कोई भी advice चाहिए, कोई guidance चाहिए, then that's the name you need to remember, as they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. आप इन्हें trust कर सकते हैं, they are very efficient and get you ready for the future. आप AG Fintax को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintax.com. वेल, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG Fintax, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US.

मैं आपको अगला गाना प्ले करूं उसके पहले टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी, यू नो, एंड नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लियोनॉक्सी मेडिकल. यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके सर्विस के लिए, जैसे कि यू नो लियोनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सिटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. मज़े की बात ये है, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी ये है कि ये सातों दिन ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM, और यहाँ कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन वॉक इन एनी टाइम. सो दैट्स टेक्सास प्राइमरी केयर एंड डेफिनेटली यू शुड मेक यूज़ ऑफ दिस सर्विस एज इट्स अवेलेबल 7 days a week, नो अपॉइंटमेंट्स रियली रिक्वायर्ड.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो।
4: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
14: Don't touch that dial. Keep listening.

Well, sun rahe aap 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. Main hu Madhulika, lekar aayi hu Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक और आज जस्ट चिल के ट्रैवल सेगमेंट में हम बातें कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की. सो आपको बताऊं कि स्विट्जरलैंड हैज फोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. यू नो जो लोग हैं स्विट्जरलैंड में, दे स्पीक जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमन. वेल डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री दे लिव इन एंड ऑफकोर्स इंग्लिश. लेकिन मजे की बात ये भी है कि अगर आप, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे और जो टिकट चेकर आता था, He would see कि हम देसी हैं और वो हिंदी में भी टूटी फूटी ही सही, बट कोशिश पूरी करता था कि हमें हिंदी में बात करे कि भाई नमस्ते, आप चाय लेंगे. एंड दे नो दैट यू नो हमारी चाय में दूध, चीनी, पत्ती खूब अच्छे से पड़ती है. सो दे रियली आर वेरी वार्म एंड अकोमोडेटिंग एंड दे ट्राई टू प्लीज यू एंड दे आर वेरी वेरी नाइस होस्ट आई फील. सो डेफिनेटली स्विट्जरलैंड जब जाएँ, आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ही करेंगे. एंड मज़े की बात यह है कि जनरली ऑल द ट्रेन run on time and you get awesome connections. आपको ज़्यादा hassle नहीं होना पड़ता. So yeah, train travel is a must and you see beautiful scenery everywhere. मतलब आप थक जाएंगे, आपका कैमरा थक जाएगा, लेकिन scenery एक के बाद एक आना नहीं थकेगी. So yes, that is one thing कि भाषाएं बहुत सी use होती हैं and हिंदी, English भी, मतलब हिंदी of course टूटी फूटी, but English तो काफ़ी अच्छे से ये लोग बोल लेते हैं.

चल वो ना बोले ना सही, बट आप जरूर बोलिएगा क्योंकि एक गिव अवे सवाल है आपके लिए। जी हाँ, गिव अवे आ रहा है फ्लेवर लाउंज की तरफ से। हेज योर चांस टू विन अ दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में। एंड ये गिव अवे जो है इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली, तो आपको वहाँ डाइन इन करना पड़ेगा एंड यूल गेट अ दाल मखनी और अ ढाबा स्टाइल चिकन करी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सो यस, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने ये लास्ट एक महीने में गिव अवे ना जीता हो, राइट? यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर, राइट? सो क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आज हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, तो आपको मुझे बताना है दैट विच इंडियन क्रिकेट लेजेंड वंस प्लेड अ क्रिकेट मैच एट यंगफ्रो जॉश इन स्विट्जरलैंड। तो आप मुझे कॉल करें, द नंबर इज 9722355555 एंड टेल मी विच इंडियन क्रिकेट लेजेंड वंस प्लेड अ क्रिकेट मैच एट यंगफ्रो जॉश in Switzerland. So yes, I'll be waiting. And Jungfrau Josh is also known as top of Europe, right? So tell me which Indian cricket legend once played a cricket match there. The studio number once again is 972-235-5555.

1,454 meters above sea level. माना जाता है कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर अ क्रिकेट मैच हैज बीन प्लेड. एंड मजे की बात ये दैट इंडिया डिफीटेड अ ब्रिटिश ऑल स्टार टीम इन द स्नो कवर्ड एल्प्स. है ना मजे की बात. एंड थैंक यू सो मच सुमित फॉर कॉलिंग इन एंड विनिंग द गिव अवे क्वेश्चन.

Well, that was the title track from Chak De. And yes, this is Madhulika lekar aayi hu Jastil. Aur aaj Jastil ke travel segment mein hum baatein kar rahe hain Switzerland ki. To aapko bataun ki, you know, bahut se log jaate hain Switzerland as tourists, of course. Well, there are many who go there for work. For example, all the state heads go to Switzerland to attend the World Economic Forum in Davos. या फिर इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिग कॉर्पोरेट्स राइट तो अगर दो नेशंस के बिग कॉर्पोरेट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है देन दे गो टू दिस न्यूट्रल कंट्री स्विट्जरलैंड टू रिजॉल्व देयर इश्यूज और ऑफ कोर्स ऑल द वेल्दी एंड ऑल द करप्ट गो टू स्विट्जरलैंड एज ए मनी इज इन स्विस बैंक तो मतलब ऐसे नहीं तो वैसे स्विट्जरलैंड लोग जाते रहते हैं

0: समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
6: ओह हाँ, ये तो अलग है।
7: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
3: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

वेल, अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ जिसके होने से आपकी जो इनकम है थोड़ी सी बढ़ जाए, राइट, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में. एज विद कनेक्टिंग अमेरिका, यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी विच इज़ डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. जी हाँ, एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप देयर. दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ द मोर्गेज इन 10 ईयर्स और लेस. सो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है. यू नीड टू कॉल जेम्स टुडे. उनका नंबर है 321-888-7345, या फिर आप विजिट करें connectingamericafinancials.com एंड यू कैन स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इन टू इनकम. सो कनेक्टिंग अमेरिका, वेयर स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट इन टू कैश. है ना, ये कितनी मजे की बात. अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल मी बैक 972-235-5555.

वेल, मैं भी हकीकत ही कह रही हूँ आपसे कि स्विट्ज़रलैंड की जो ट्रेन कनेक्शंस है ना, दे आर वेरी वेरी ऑसम, बिकॉज जो कनेक्शंस हैं दे डोंट मेक यू वेट अ मिनट एक्स्ट्रा. जनरली ऑल द ट्रेन्स इन स्विट्ज़रलैंड आर वेरी पंक्चुअल एंड द यू नो द इट्स कंसिडर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल ट्रेन सिस्टम्स. एंड कुछ ट्रेन जो डिलेड होती भी हैं दे आर लेस देन अ मिनट लेट. एंड कैन यू बिलीव इट कि अगर 1 मिनट से भी कम अगर डिले है तो लोग कंप्लेन करते हैं, एज वहाँ पर लोग आर यूज टू कि ट्रेन्स तो एकदम टाइम पर चलेंगी, तो इंतज़ार करना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. दे डोंट वॉन्ट कि वो ट्रेन का कोई एक फ्यू सेकेंड्स भी इंतज़ार करना पड़े.

वेल, आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। अगर ग्रोसरी करनी है तो मैं आपको जगह बता देती हूँ। जी हाँ, अटेंशन देसी फूड लवर्स एंड स्मार्ट शॉपर्स, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू हेड टू देसी मंडी। जी हाँ, आपकी जो नेक्स्ट ग्रोसरी रन है जस्ट गॉट अ होल लॉट बेटर एट देसी मंडी, जो कि लुइसविल में है। यू नो, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ साथ ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज या हलाल मीट या कोई स्पाइसेस, कुछ मिठाई, कुछ स्नैक्स या कुछ भी डिलीशियस हॉट फूड, वेल देसी मंडी ब्रिंग्स द टेस्ट ऑफ होम ऑल अंडर वन रूफ। तो मतलब एक जगह जाएं और ये सब खरीद डालें। तो यानी कि या तो आप अपने डेली एसेंशियल्स खरीद रहे हों या कोई फैमिली फीस्ट या कोई पार्टी प्लान कर रहे हों, यू विल फाइंड क्वालिटी, वैरायटी एंड अनबीटेबल देसी फ्लेवर वेटिंग फॉर यू। तो आप बस अपनी शॉपिंग लिस्ट को पकड़ें एंड हेड टू देसी मंडी टुडे, देसी मंडी वेयर द देसी कम्युनिटी शॉप्स, ईट्स एंड फील्स एट होम।

Well, that was एक गरम चाय की प्याली हो, taken from हर दिल जो प्यार करेगा. Well, this is मधुलिका लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम as the name suggests Just Chill. Well, आज हम travel segment of Just Chill में बातें कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की. तो स्विट्जरलैंड की बहुत सी inventions हैं, जैसे कि ये जो modern potato peeler है, या velcro improvements, या even the zipper were all invented in Switzerland. लेकिन स्विट्जरलैंड जो है is very famous for watches. आपको पता है कि most of the well-known watch brands जैसे कि Tagswar, Rolex, Rado, Omega, all are from Switzerland. In fact, हर railway station में there is a huge Rolex clock which you will get to see and it looks really nice. बड़ा ही अच्छा सा लगता है वो देख के. And yes, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि train connections are always on time. Very rarely एक minute या एक minute से भी कम का delay होगा. तो जो वक्त का उनके लिए इम्पोर्टेंस है, एंड ऑफकोर्स वो तो है ही है, एंड ऑफकोर्स वॉचेज़ आर वेरी वेरी फेमस ऑफ स्विट्जरलैंड.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
8: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
8: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m. Join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
2: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. और आज हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हम बातें कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की. तो आपको बताऊं कि शाहरुख खान हैज़ अ ह्यूज कनेक्शन विद स्विट्जरलैंड, बिकॉज बहुत सी उनकी आइकॉनिक बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स और फिल्म्स फीचरिंग हिम वर शॉट इन स्विट्जरलैंड. यू नो, ऑफकोर्स डायरेक्टर यश चोपड़ा शॉट मैनी एस आर के फिल्म इन द स्विस एल्प्स, मेकिंग इंडियन टूरिस्ट फॉल इन लव विद स्विट्जरलैंड. ये तो फैक्ट है. नहीं, अगर आप इंटरलाकिन टाउन जाएंगे ना, यू हैव दैट डेजा वू फीलिंग, बिकॉज आपने इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जो इंटरलाकिन में शूट हुई हैं. सो द टाउन ऑफ इंटरलाकिन एक्चुअली ऑनर्ड यश चोपड़ा विद अ स्टैच्यू, बिकॉज बॉलीवुड ब्रॉट सो मेनी इंडियन टूरिस्ट देयर. यू नो, DDLJ, दिल तो पागल है, वीर जारा, मोहब्बतें, यू नो, दे फीचर ब्यूटिफुल स्विस लैंडस्केप्स. सो येस, स्विस टूरिज्म इवन प्रमोट्स बॉलीवुड टूर्स. फैंस कैन विजिट फिल्मिंग लोकेशंस जहाँ पर शाहरुख खान के सॉन्ग्स वर शॉट.

वेल, गाड़ी चलाते हुए तो बिल्कुल झूमना नहीं चाहिए, एंड कभी कभी आपकी गलती ना भी हो तब भी यू डू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आपको रखना है एक ही नाम याद, एंड दैट इज अटर्नी ओमार ख्वाजा। एज ये आपका केस फाइट करेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलाएंगे, एंड साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे। सो येस, यू नीड टू हैव एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड वेल, और आप उन्हें पे नहीं करते अंटिल यू विन। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और विजिट अटर्नी ओमार .com, दैट्स अटर्नी ओमार .com।

वेल, अगर यहाँ से आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो इट्स अबाउट 10 to 12 आवर्स नॉनस्टॉप फ्लाइट इफ़ यू गेट अ डायरेक्ट फ्लाइट, यू नो. सो DFW से बहुत से लोग फ्लाई फ्रॉम DFW इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू सिटीज़ जैसे कि ज्यूरिख एंड जिनेवा, एंड कनेक्टिंग फ्लाइट्स हों देन द टोटल ट्रैवल टाइम कुड बी एनीवेयर बिटवीन 13 to 17 आवर्स. वेल ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द लेओवर कि आपका लेओवर जो है वो कितने घंटों का है. So yes, definitely make a plan. Summer is the best time to travel, I feel. And 4-5 din bhi agar aap jayenge, main to kahungi ki kam se kam 10 din ko jaye ya hafte bhar ko jaye, but 4-5 din bhi agar aap jate hain, so that's a good enough time for you. So if you arrive in Zurich, then you know you can explore the old town streets, you can try Swiss hot chocolate and the fresh croissant. मुंह में पानी आ रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ ट्रेन टू ल्यूसर्न एंड वॉक ऑन द फेमस चेपल ब्रिज, यू नो इट्स रियली नाइस. लेक ल्यूसर्न की बोट राइड कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स स्विस चीज फॉन्ड्यू डिनर कर सकते हैं. यू कैन स्ट्रोल थ्रू फेरी लाइट स्ट्रीट्स, बहुत ही मजा आता है वहाँ पे. एंड स्विस ट्रेन एज आई टोल्ड यू आर सो पंक्चुअल दैट इफ अ ट्रेन इज लाइक 1 मिनट लेट, पीपल स्टार्ट चेकिंग देयर वॉचेस. तो लेट तो होती ही नहीं है ट्रेन, द कनेक्शंस आर सो गुड.

वेल, अगर मैं कहूँ तो मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बता सकती हूँ जो आप स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हैं, कर सकते हैं, राइट? आप माउंट टिटलिस जा सकते हैं, जहाँ पर रोटेटिंग केबल कार का मज़ा ले सकते हैं, या यूरोप्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज देख सकते हैं, स्नो ट्यूबिंग का शौक है या ग्लेशियर केव्स देखनी है, देन माउंट टिटलिस जाकर आप देख सकते हैं। आफ्टरनून में यू कैन एंजॉय सम हॉट चाय या कॉफ़ी इन देयर स्नो कैफेज़, बड़ा मज़ा आता है। ऑफ कोर्स यू कैन यू नो रिटर्न टू ल्यूसर्न एंड डू सम शॉपिंग फॉर स्विस चॉकलेट्स एंड वॉचेस। मज़े की बात यह है कि आप जब वहाँ पर कुछ स्विस चॉकलेट्स खरीदने भी जाते हैं तो आपको ट्राई इतना कुछ करा देते हैं कि आपका पेट भर जाए। बहुत सी इंडियन मूवीज जो हैं, द सीन्स वर इंस्पायर्ड बाय दीज स्विस स्नोई लैंडस्केप्स। इंटरलाकेन अगर आप जाएंगे, देजा वो फीलिंग होगी। अगर आपको यूंगफ्रो जाना है, देन यूंगफ्रो के लिए यू हैव टू गो टू इंटरलाकेन, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज टॉप ऑफ यूरोप। तो ट्रैवल टाइम जो है, आई बिलीव कि वहाँ पे अगर आप एयरबीएनबी में रुकेंगे तो जो होस्ट होते हैं, दे हैव द बेस्ट वेदर ऐप एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि कब फॉगी होगा, कब क्लियर स्काई होगी। सो दे कैन रियली गाइड यू कि आपको कब निकलना चाहिए, कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए। एंड वहाँ पे जाके आप आइस पैलेस देख सकते हैं, या अगर स्नो पे फन एक्टिविटीज़ करनी है देन यूंगफ्रो जाइए आप। आपको पता है कपिल देव वंस प्लेड क्रिकेट एट यूंगफ्रो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर इंटरलाकेन कैफेज, यू कैन ट्राई सम स्विस डेजर्ट्स। फिर शिनेगे प्लाटे, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ आप जा सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी स्विस विलेज मैजिक। आप वो विंटेज ट्रेन ट्राई करें शिनेगे प्लाटे जाने के लिए, विच इज़ अ कॉग व्हील ट्रेन। या फिर आफ्टरनून में यू कैन गो टू अल्पाइन फ्लावर गार्डन्स, यू कैन डू लॉट्स ऑफ हाइकिंग। एंड मज़े की बात ये कि अगर आपकी कोई फिक्स्ड आइटनरी नहीं भी है ना, तो आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कोई भी स्टेशन पर उतर जाएँ, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑल द प्लेसेज ऑल लैंडस्केप्स आर सो सीनिक इन स्विट्ज़रलैंड दैट यू कैन नेवर गो रॉन्ग। एंड ट्रेन कनेक्शंस इतने अच्छे हैं कि आपको ज़्यादा देर कोई भी ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो एक दिन तो आप ऐसे ही रखें कि जहाँ मन होगा वहाँ उतर जाएंगे और वहाँ की लैंडस्केप इन्जॉय करें। सो येस, इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं। डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे। वेल, कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ।

किया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
14: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
15: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
14: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
16: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
17: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

दिस इज केजीएमवी 104.9 एफएम फनेश अड्डे पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आपकी और हमारी ये जो म्यूजिकल मुलाकातें होती है वो होती है एवरी वीकेंड सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे आफ्टरनून। सैटरडेज 12 से 3 के बीच में एंड संडेज 12 से 2 के बीच में। मधुलिका को आपने सुना बहुत ही खूबसूरत शो के साथ और अब होगा हमारा साथ 3 बजे तक, जहां पर 2 बजे तक आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूं बॉलीवुड बेस्ड गाने, थीम बेस्ड गाने एंड राइट आफ्टर दैट बातें होती है कम्युनिटी की। जी हाँ, दैट इज अ कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। सारी बातें ऑन 104.9 एफएम वनेशिया रेडियो। सो आज है कौन सा विषय? वेल, आज है कुछ मिले जुले गाने, नगमे और तराने, उसके साथ होती है फिल्मी कहानी। यानी कि मैं आपको सवाल पूछती हूँ, एक कहानी बताती हूँ और उससे आप फिल्म का नाम पहचानते। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, पहले सुनेंगे कुछ गाने।

0: बिंदु उस धुन की तरह थी, वो धुन जो आप एक बार सुन ले साली जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती।
1: हरे या मैं दिल हरे, आयुष्मान खुराना की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत, अरिजीत सिंह एक्चुअली, और आयुष्मान खुराना पे फिल्माया गया था ये गीत मेरी प्यारी बिंदु, क्या है नाम। और ये पता है आपको कि ये गीत था, राइट, यू रिमेम्बर दैट, जो पड़ोसन फिल्म थी उसमें ये गीत था एंड उसमें मेरी प्यारी बिंदु सो वो गीत से बन गया फिल्म का टाइटल। कुछ मिले जुले गाने आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि नीलम के साथ, और कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं आपसे पहली कहानी आपको बताऊंगी और मुझे आप बताएंगे कहानी से फिल्म का नाम।

फिल्म का नाम जो है इस फिल्म से जो आपने गीत सुना उसका नाम है सुपर नानी. नाउ नानी वैसे वैसे नहीं, नॉर्मल वाली नहीं, लेकिन सुपर नानी ये फिल्म का नाम है. एंड अगर आपने फिल्म कभी नहीं देखी तो आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि कुछ कुछ फिल्म ऐसी होती है कि जिसमें बड़े बड़े कलाकार होने के बावजूद कहीं ना कहीं फिल्म बिजनेस अच्छा नहीं करती. इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बिजनेस, राइट? यही नहीं कि चलिए पैसे नहीं कमाए, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि लोगों को पसंद नहीं आई. और पता है आपको इसकी फिल्म में नानी कौन बनी थी? जी वो थी रेखा. जी हाँ, रेखा बनी थी इस फिल्म में सुपर नानी. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और गुजरात और आपने, देर वॉज अ ड्रामा, गुजराती में भी था एंड इन मराठी ऑल्सो, आई डोंट नो द नेम ऑफ मराठी ड्रामा, लेकिन गुजराती ड्रामा का नाम था बा रिटायर थाई छे, जिसका मतलब है कि बा ग्रैंड मा इज गेटिंग रिटायर्ड. सो इट वॉज अ वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड मूवी, कि कैसे अ लेडी, अ वूमन हु हैज़ वर्कड ऑल हर लाइफ एंड नाउ वन फाइन डे शी इज़ सेइंग यू नो वॉट, इनफ इज़ इनफ, आई एम नॉट कुकिंग, आई एम नॉट क्लीनिंग, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड किड्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई हस्बैंड, नॉट फॉर हाउस, आई एम गोइंग टू लीव फॉर माई सेल्फ. ये ड्रामा इतना चला था कि इस ड्रामे से बहुत सारी फिल्म्स बनी. एंड आई बिलीव ये जो सुपर नानी फिल्म है, दैट वॉज द एग्जैक्ट स्क्रिप्ट ऑफ बा रिटायर थाए छे, लेकिन रिटायरमेंट जैसी कुछ बात थी नहीं, इस फिल्म ने बिल्कुल बिजनेस नहीं किया था.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा? वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: आ गया, कम ऑन, गेट रेडी.
4: परमाणु फिल्म से सुना अपनी गीत लगया लगया कसुमिदा रंग. और इस कार्यक्रम के इस सेगमेंट के हम प्राजक जो है उनका आभार, उनकी बिल्कुल हम धन्यवाद करना चाहेंगे. दैट इज रीम होम मॉर्गेज. नंबर है उनका 9722455626, दैट इज 9722455626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बहुत सालों से आपकी सेवा में है, सिंस 1998, और लाइसेंस इन ऑल 50 स्टेट्स. उनके पास एक ऐसी एक्सपर्ट टीम है कि जहाँ पर आपके घर को तो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ये सारी बातें स्ट्रेस फ्री सॉल्यूशंस, यानी कि एक ही नाम, एंड दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज. तो ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉल 9722455626, दैट इज 9722455626. मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड. आज 2 बजे तक कुछ बॉलीवुड के गाने होंगे, एंड एज आई सेड, कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगी, फिल्मी कहानी होगी, बिल्कुल फिल्मी, और आपको फिल्म का नाम पहचानना होगा, ठीक है? लेकिन उसके साथ ऑफकोर्स हम बहुत सारे आपको मिले जुले गाने भी सुनवाते हैं. ये सारे गाने, ये सारी बातें होती है मेरे यानी कि नीलम के साथ एवरी वीकेंड.

0: अब क्या
1: आ गया है, कम ऑन.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
4: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
3: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
5: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
6: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
7: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
14: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ नीलम आपके साथ. Very very good afternoon to all of you. धूप ज़्यादा है and since last few days कहीं ना कहीं धूप इतनी नहीं थी. बारिश होती थी ऑन एंड ऑफ, जो अच्छा भी लगता था, लेकिन अगर आपके आउटडोर प्लान होते थे तो वी वर प्रेइंग ऑल्सो कि भाई बारिश आज ना हो. खैर, आज तो बिल्कुल कड़ी धूप है, लेकिन इस कड़ी धूप में आपके दिल को ठंड ठंड हम गाने सुना रहे हैं और ये गाने होंगे 2 बजे तक. एक्चुअली गाने होंगे क्योंकि 2 से 3 के बीच में गाने बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो जो कार्यक्रम है दैट इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट और उसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप की प्रस्तुति. कम्युनिटी राउंडअप में जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं हमारे कम्युनिटी में होने वाले इवेंट्स की. उमर ख्वाजा जी, बिल्कुल उनको याद करने के लिए हम आपको एक नंबर दे देती हूँ. कभी कभार ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी बातें घट जाती है जो हम नहीं चाहते, एंड वेन वी आर इन दैट काइंड ऑफ एक्सीडेंट हमें कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होती है. वी वॉन्ट टू नो वॉट आर अवर नेक्स्ट स्टेप्स, वेट कैन वी डू, राइट? तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा नंबर देती हूँ जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. जी हाँ, आपने सही सुना, यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन. नंबर है उनका 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com once again that is attorneyomar.com और ये कार्यक्रम के लिए हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद मैं आपसे एक पहली कहानी आपको बताऊंगी और उस कहानी से आप मुझे बताएंगे फिल्म का नाम। लेकिन पहले ये गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल ऑन 104.9 FM।

गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं। मेरी मोहब्बत।

0: बोलना हल्के हल्के जी, बहुत ही खूबसूरत गीत शंकर एहसान लॉय के संगीत में सजा हुआ था। चलिए अब है हमारे इस सेगमेंट की पहली कहानी। जैसे कि आप जानते हैं कभी कभार हम ये सेगमेंट करते हैं जहाँ पर मिले जुले गाने होते हैं और फिल्मी कहानी का सेगमेंट, यानी कि मैं आपको एक कहानी सुनवाती हूँ सिर्फ दो या तीन लाइन में और आप मुझे बताएंगे फिल्म का नाम। सो कश्मीर की एक वादिया में शुरू होती है बहुत ही खूबसूरत प्यार की कहानी जूही और शायराना रेहान की। जूही जो देख नहीं पाती लेकिन बहुत ही प्यारी लड़की है, उसकी मुलाकात होती है कश्मीर में बहुत ही शायराना रेहान के साथ। बस फिर क्या था, एक दूसरे से प्यार होने लगता है, लेकिन ये जो मासूम जूही है उसे नहीं पता कि इस मासूम मोहब्बत के पीछे छिपा है एक खौफनाक सीक्रेट। जी हाँ, जो वो नहीं जानती, जो चेहरा ऐसा छुपा है जो नहीं जानती, जो शायद कहीं ना कहीं तबाही के लिए निकला है। सालों बाद जूही के सामने ये सच नज़र आता है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो क्या होती है ये कहानी जिसमें वतन और प्यार के बीच में एक होती है जंग, जहाँ एक को बचाना है तो दूसरे को मिटना ही होता। बताएंगे मुझे आप कि कौन सी है ये कहानी जूही और रेहाना की, एंड 972-235-5555 मनीष या रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिए। हाय जी, रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिए सर जी। बताइए।
1: ये मूवी फना है,
0: बिल्कुल फना
1: आमिर
0: है सर,
1: खान
0: आपने
1: काजोल
0: देखी है
1: का।
0: ये मूवी?
1: हाँ देखिए।
0: वेरी नाइस, थैंक यू। एंड जस्ट वन मोर कॉल एंड अलाउज दैट लाइन। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ इस मूवी की, इस कहानी की, जिसमें रेहान है और जूही भी है। एंड फनीश या योर लाइव ऑन है। हेलो,
2: हेलो,
0: यस मैम, बताइए क्या है आपका जवाब?
2: मिशन कश्मीर।
0: मिशन कश्मीर में भी कश्मीर की वादियाँ, लेकिन उसमें जो हीरोइन थी शी वॉज नॉट ब्लाइंड, राइट? इसमें जूही जो है वो नज़र से देख नहीं पाती थी। एंड ये कहानी है, बिल्कुल बहुत सारे कॉल्स हैं लेकिन मैं सारे कॉल्स ऑन एयर नहीं लूँगी क्योंकि आपको भी बहुत सारे गाने सुनने को मिले। कहानी है फना, जूही और शायराना रेहान की, जहाँ पर दोनों के बीच में, वतन के बीच में और प्यार के बीच में जो जंग है, किसी ना किसी को तो फना होना ही होगा।

0: तेरा घाव ला, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, कितनी खूबसूरत ये बात है ना। और ये जो गीत आपने सुना, बहुत ही सुरीला गीत, सुई धागा फिल्म से लिया गया था। नाउ दैट नेम में साउंड वेरी वियर्ड कि यार ऐसी फिल्म भी बनती है, सुई धागा, व्हाट इज दिस टेलरिंग। एक्चुअली इट वाज अ स्क्रिप्ट अबाउट टेलरिंग, एंड जो टेलर थे हमारे इस फिल्म में वो थे नन अदर देन वरुण धवन। पहली बार एक ऐसे रोल में नजर आए थे, वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की कहानी, जिसमें उनकी पत्नी जो है वो है अनुष्का शर्मा। जी हाँ, आपको जानकर सोचकर हैरानी लग रही है राइट, कि वरुण धवन छोटे से गांव में अ सिंपल विलेज बॉय कैसे लगते होंगे एज अ टेलर दैट आल्सो। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट कहानी, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर वरुण धवन एज वेल एज फॉर अनुष्का शर्मा। सो कहीं ना कहीं ये फिल्म इसीलिए नहीं चली। देखिए, कभी कभार ये बात होती है कि जब हम एक हीरो या हीरोइन को एक इमेज में कैद कर लेते हैं राइट, व्हेन दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल। तो वरुण धवन के साथ ये बहुत होता है कि व्हेनेवर ही ट्राइज वेरी सीरियस रोल्स, उन्हें लगता है कि चलिए बहुत मैंने जंपिंग कर ली, बहुत मैंने कॉमेडी कर ली, मैंने रोमांटिक रोल्स भी मैंने बहुत कर लिए, कुछ डिफरेंट मैं करूँ। जब जब पुअर गाय ट्राइज दैट ही डजंट सक्सेस, चाहे ये फिल्म सुई धागा हो या अक्टूबर, देर वॉज वन मोर फिल्म दैट आई हैड मेंशन लिटिल बिट आई थिंक अ फ्यू वीक्स अगो, कि अक्टूबर करके भी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत ही सीरियस रोल किया था, दैट डिड नॉट वर्क। सो कुछ हीरोज या हीरोइन की तकदीर ही ऐसी होती है कि भाई आप जो करते हैं वही कीजिए, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर इमेज एंड रोल्स, क्योंकि ऐसे में ही आपकी गाड़ी चलती पड़ेगी।
1: क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना,

इश्क बुलावा जब आए तो आए जी, बिल्कुल आपको भी बहुत सारे बुलावा आए होंगे, लेकिन ये जो फिल्म है उसका नाम था हंसी तो फंसी। जी बिल्कुल, और इस फिल्म में थी परिणीति चोपड़ा, उनके साथ थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। नाउ परिणीति चोपड़ा इज़ ऑल्सो अनदर एक्ट्रेस की जिनको हमने कम फिल्मों में देखा है, लेकिन शी हैज़ ट्राइड वेरी डिफरेंट रोल्स, राइट? चाहे आप उनको मेरी प्यारी बिंदु में देख लीजिए, हंसी तो फंसी में देख लीजिए, और एनी अदर फिल्म जहाँ पे वो शाहरुख खान के साथ भी हो सकती है। सो शी हैज़ नेवर डन एनी थिंग विच इज़ वेरी टिपिकल। एंड आई थिंक बॉलीवुड में ये बात बहुत ही अहमियत रखती है कि वेन यू स्टार्ट डूइंग अ वेरी वेरी टिपिकल रोल्स, यू काइंड ऑफ यू नो फिट योर सेल्फ इन टू दैट इमेज कि बस मैं तो भाई ऐसा ही करूँगी, आप मुझे दूसरा रोल देंगे तो आपकी मूवी फ्लॉप होगी। सो यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल इन पिकिंग अप योर फिल्म्स एंड चूजिंग योर रोल्स, कि ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई परिणीति है तो बस यही काम कर पाएगी। ऐसे बहुत सारी बातों के साथ, कुछ मिले जुले गानों के साथ, मैं हूँ नीलम, आप ही के साथ एवरी वीकेंड।

ब्रह्मास्त्र पार्ट वन देखने के बाद मुझे लगा था कि उसको पार्ट वन क्यों कह रहे हैं भाई आप, क्योंकि पार्ट टू देखने की कोई भी ख्वाहिश नहीं थी पार्ट वन देखने के बाद. एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मुझे लगा इतने सारे पैसे, इतने सारी बिग बजट फिल्म, इतने सारे VFX, बड़े बड़े कलाकार, अमिताभ बच्चन जी को भी आपने फिल्म में ले लिया, आलिया भट्ट को ले लिया, रणबीर कपूर को ले लिया, लेकिन फिल्म में कुछ बात ऐसी थी कि लग रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग, चल क्या रहा है भाई फिल्म में. खैर अब पार्ट वन देखा है आपने, तो अगर पार्ट टू देखनी है ये फिल्म तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन आई एम श्योर कि अगर पार्ट वन टाइटल लिखा था दे आर ट्राइंग फॉर पार्ट टू एज वेल. एजी फिनटेक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं नीलम जी. बिल्कुल, उनका नंबर है 4699429888 और यू कैन विजिट AGFintechs.com, फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्स फर्म इन द US, जो आपके लिए यानी कि आपके इंडिविजुअल्स के लिए भी हम करते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प द बिजनेसेस. वंस अगेन इट इज AGFintechs.com. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. वंस अगेन नंबर इज 4699429888. कहीं मत जाएगा, अभी दो कहानियां और बाकी है. मैं आपको दो कहानी सुनवाऊंगी, कुछ मिले जुले गाने होंगे, कुछ बातें होगी आपके साथ 2 बजे तक. एंड 2 to 3 PM हम आपसे ही बातें करेंगे कम्युनिटी के. जी हाँ, कम्युनिटी राउंड अप में बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की आपको जानकारी दूंगी और हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि. तो ये सारी बातें, गाने, प्रस्तुति आपके साथ, मेरे साथ रहती है एवरी सैटरडे एंड संडे.

0: बस एक धड़क चाहिए, धड़क पार्ट टू. वेल पार्ट टू जैसा नहीं था, दे जस्ट यूज धड़क टू. इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज कि आपने पहली धड़क देखी थी तो इट वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टोरी. इट वॉज नॉट, उसमें अलग कलाकार भी थे, कहानी भी अलग थी, लेकिन फिर भी जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सोचा कि धड़क फिल्म को बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं, लेट्स कीप द नेम धड़क टू. लेकिन एज आई सेड, देयर वाज नथिंग अबाउट द फर्स्ट फिल्म. खैर, तो आज है हमारी फिल्मी कहानी का सेगमेंट जिसमें मैं आपको एक फिल्म की कहानी बताऊंगी. और कहानी जो होती है वो किरदार के नाम के साथ होती है, राइट, नॉट विद द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस. नॉट कि जो उसमें एक्चुअली एक्टर कौन थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. तो जो आप नाम सुनेंगे वो उनके किरदार के नाम होंगे. तो ये जो कहानी है उसमें टूटे हुए दिल के साथ वाणी बन जाती है कवयित्री. उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे सिंगर और म्यूजिशियन के साथ जो हमेशा ज़माने से खफा खफा है, पता नहीं क्यों. और उस म्यूजिशियन का नाम है क्रिश. तो क्रिश और वाणी की मुलाकात हो जाती है और सुर और शब्द मिल जाते हैं, खूबसूरत कहानी को मोड़ देती है. लेकिन क्रिश की संगीत की दुनिया में धीरे धीरे उड़ान के साथ ही पता चलता है कि वाणी को अल्जाइमर होने लगा है, एक ऐसी बीमारी जो खुद वो भूल जाती है. तो क्या क्रिश अपने प्यार के साथ, बेपनाह मोहब्बत के साथ, संगीत के साथ, यादों के साथ वाणी के लिए कुछ कर पाएगा? जो क्रिश वाणी से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन वाणी ये भी नहीं चाहती कि क्रिश अपने करियर को, अपने संगीत को इस बीमारी के लिए छोड़ दे. तो कौन सी है ये बीमारी, कौन सी है ये फिल्म जहाँ धुनों के जरिए वाणी की मिटती हुई यादों को वापस लाने की कोशिश करता है क्रिश? बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 FM पनेजिया. आपकी रेडियो की आवाज़ प्लीज. हेलो, यस सर, बताइए.
1: जी नीलम जी, कैसे हैं?
0: बस एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: जी ठीक ठाक.
0: आपका नाम बताइए.
1: जी सोहेल.
0: सोहेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जी फॉर कॉलिंग इन. बताइए क्या है आपका जवाब?
1: आई थिंक इट्स सैयारा.
0: सैयारा, हाय, आपको नाम पता है क्या? और आपने ये फिल्म देखी थी?
1: जी बिल्कुल देखी थी और बहुत अच्छी फिल्म.
0: बहुत अच्छी फिल्म, बहुत बहुत वेरी वेरी डीपली इमोशनल. थैंक यू सोहेल सर.
1: वेरी डीपली इमोशनल.
0: थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट. तो बात तो कौन सी फिल्म की कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं लूंगी. बताइए क्या है आपका जवाब?
2: सैयारा.
0: सैयारा, इट इज सैयारा. और आपको अच्छी लगी थी ये फिल्म मैम?
2: यस,
0: मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर हम कहते हैं कि आज के ज़माने में डीपली इमोशनल फिल्म्स नहीं बनती, आजकल की जनरेशन दे डोंट रियली हैव दिस कमिटमेंट थिंग एंड प्यार मोहब्बत की बातें नहीं मानते, एंड यू नो ऑल दोज नोशंस, सारी जितनी भी हमारी बातें कि आज की जनरेशन ये, आज की जनरेशन वो, प्यार में नहीं मानती, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं मानती, लेकिन दिस आर द 20 समथिंग किड्स. एंड यू नो द वे दे हैव पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर्स, कि जिस तरह से वो अपने प्यार के लिए, क्रिश की मैं बात कर रही हूँ, द हीरो, जिस तरह से वो कुर्बानी देना चाहते हैं अपने संगीत की, एंड एट द सेम टाइम वाणी, उन्हें पता है कि अगर अल्जाइमर की बीमारी के पीछे क्रिश अपनी ज़िंदगी घुमा देंगे तो उनके करियर का क्या होगा. बहुत ही खूबसूरत कहानी, धुनों के जरिए यादों को वापस लाने की कहानी, यानी कि सैयारा.

साथ। जलेबी आपको अच्छी लगती है एज अ स्वीट, राइट? तो ये फिल्म भी शायद आपको अच्छी लगेगी। मैं जलेबी अच्छी नहीं लगती मुझे, मैं नहीं खाती स्वीट्स इतनी, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी फॉर द फैक्ट कि इसकी कहानी एंड आई बिलीव कि बांग्ला फिल्म जो थी एक उसकी रीमेक थी ये फिल्म, लेकिन फिर भी इट वॉज अ प्रिटी डिफरेंट स्क्रिप्ट। एंड यू नो समटाइम्स इट इज़ गुड टू हैव अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि हर बार आप एक ही फिल्म, एक ही टाइप की फिल्म हीरो हीरोइन को देखकर भी कभी कभी लगता है कि कुछ हटकर होना चाहिए। सो दिस फिल्म वॉज सिमिलरली डिफरेंट। एंड इनके अगर आप स्टार्स की बात करें तो वरुण मित्रा थे इसमें एंड रिया चक्रवर्ती थी। सो वेरी वेरी डिफरेंटली डन फिल्म, वेरी डिफरेंट स्टोरी, स्क्रिप्ट, और उसके गाने बहुत अच्छे थे, जिसका गीत आपने अभी सुना फ्रॉम द फिल्म जलेबी। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम। तो अगर आपको कुछ अलग देखना है, एंड एज आई सेड इट्स अ बांग्ला फिल्म की रीमेक है, लेकिन फिर भी इन हिंदी ऑल्सो इट्स नॉट रियली बैड वॉच। आपको देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार 2 घंटे क्यों वेस्ट कर दिए, आपको अच्छे लगेगी। एंड दैट वॉज जलेबी।

ओ, आप स्वरा की बातें हो या संगीत की बातें, ये सारी बातें आप सुनते हैं मेरे यानी कि नीलम के साथ और 104.9 FM पनेशिया रेडियो टेक्सस प्राइमरी केयर. जी हाँ, जो आपके लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत सालों से है, फॉर 13 ईयर्स, लास्ट 13 ईयर्स, 13 साल से है आप ही की सेवा में, जिसका नाम है टेक्सस प्राइमरी केयर. नाउ दे आर ग्रोइंग विथ अ ब्रांड न्यू एंड सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. जी हाँ, एक नया नाम और उनकी जो लोकेशन होगी वो होगी इन फ्रिस्को. इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनोक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, जहां पर आपके लिए है प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन्स एंड ऑल्सो हिमालयन मेडस्पा सर्विसेज. ये सारी बातें अंडर वन रूफ. एंड वंस अगेन, ये है फ्रिस्को में, ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM. शाम के 8 बजे तक आप जा सकते हैं, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, वॉक इन एनी टाइम. यू नो, एनी टाइम वी हैव टू गो टू डॉक्टर, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे US में है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. इंडिया की बात अलग थी, वेदर यू आर ग्रोन अप इन मुंबई और एनीबडी, कि अरे वो हमारे जो फिजिशियन होते थे, फैमिली डॉक्टर, नीचे बिल्डिंग के नीचे होते थे, राइट? और मे भी नुक्कड़ के आगे थोड़े चल के जाओ और कुछ हुआ है तो बस वहाँ पे बैठो थोड़ी देर, आपका नंबर आ जाएगा. यहाँ पे इफ़ यू हैव टू गो, वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि यार पता नहीं जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी 2-3 आवर्स की, ये पूरी जब हमारी जो हर्डल हो जाती है, एंड टू कॉल द नर्स और पूछना पड़ता है कि यार कब मिलेगी अपॉइंटमेंट, एंड बाय द टाइम यू गेट एन अपॉइंटमेंट लगता है कि चल यार ठीक है टैलेनॉल ले लेते हैं, राइट? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि देर इज़ नो अपॉइंटमेंट नीडेड, यू कैन जस्ट वॉक इन एनी टाइम. वंस अगेन, इसका नाम है आप ही के लिए टेक्सस प्राइमरी केयर की दूसरी लोकेशन, एंड इट इज़ अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इन फ्रिस्को. नाम है उसका ल्यूनोक्सी मेडिकल फॉर एंटायर कम्युनिटी.

0: बहुत ही इस खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आपका इस सेगमेंट में। और ये जो गीत आपने सुना उस फिल्म का नाम था लैला मजनू। जी हाँ भाई, लैला मजनू की कहानी इतनी पुरानी है लेकिन इतनी रंगीन है और इतनी डीपली इमोशनल है कि बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इस फिल्म बना ली है, राइट? एंड समटाइम इट डजंट हैव टू बी एक्चुअल स्क्रिप्ट। ये जो फिल्म है लैला मजनू की मैं बात कर रही हूँ उसमें तृप्ति डिमरी थे एंड दिस वॉज अबाउट आई थिंक अ फ्यू ईयर्स अगो, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स अगो, जिसमें कहानी का नाम जो हेडर है दैट इज़ ऑफकोर्स लैला मजनू, बट इट डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द एक्चुअल जो ओरिजिनल लैला मजनू थी वो कहानी उसमें नहीं थी। हाँ, प्यार की कहानी थी, मोहब्बत की कहानी थी, बट इट हैड नथिंग टू डू विद द एक्चुअल जो स्टोरी हमने देखी है पर्दे पर लैला मजनू की, वो नहीं थी। खैर, ये कहानियाँ तो चलती रहेगी लेकिन आज का हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है फिल्मी कहानी, तो जिसमें मैं आपको कहानी सुनवाती हूँ और आप सिर्फ कहानी सुनकर, कहानी के किरदार सुनकर मुझे फिल्म का नाम बताते हैं, ठीक है? तो मैं आपको अब कहानी सुनवाती हूँ और उस कहानी से आपको बतानी है मुझे फिल्म का नाम। कहानी है मेरठ के एक छोटे से कद के लेकिन बहुत बड़े सपनों वाले बहुआ सिंह की, जिनको प्यार हो जाता है व्हीलचेयर पर बैठी हुई जीनियस साइंटिस्ट आफिया के साथ, और कभी कभी उनको प्यार होता है बॉलीवुड के सुपरस्टार बबीता कुमारी के साथ भी, क्योंकि उनसे भी वो बहुत ही करीब आ जाते हैं। वेल, प्यार तो आफिया से हो जाता है लेकिन उनसे वो शादी नहीं करती क्योंकि वो तो है बहुआ सिंह। लेकिन अपनी कमियों को वो पीछे छोड़ के प्यार की तलाश में मेरठ से सीधे पहुंच जाते हैं अमेरिका, जी हाँ, यूएस में। और इतना ही नहीं, वहाँ से वो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की एक सफ़र पर निकल पड़ते हैं अपनी गलतियों को शायद कहीं ना कहीं सुधारने के लिए, अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए। ये जो है हमारे बहुआ सिंह हीरो बनने की एक उड़ान भर भी लेते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि किस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, जो है तो छोटे कद के लेकिन उनके ख्वाब बड़े बड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए स्पेस पर भी चलने को तैयार हो जाते हैं। तो सच्ची मोहब्बत वाले हमारे इस हीरो का नाम और इस फिल्म का नाम बताएंगे मुझे आप। एंड फनीश, या योर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: हाय।
0: यस सर,
1: माय नेम इज महेंद्र एंड मूवी नेम इज जीरो।
0: जीरो इट इज सर। आपने देखी है फिल्म?
1: Yeah, yeah, I saw that.
0: Did you like it? I mean, honest opinion, what did you think about the film?
1: Somewhat. Second half was not so great, but yeah.
0: Yeah, little bit unrealistic, right? I was like, ki NASA mein, they are showing ki koi nahi mil raha hai and they are taking this guy who has no experience at all to go to the spaceship and he is going there. तो मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा कि भाई बॉलीवुड वाले थोड़ी सो रिसर्च कर लिया करो। बट थैंक यू सर फॉर कॉलिंग इन। एंड फनीश, या योर लाइव ऑन एयर।
2: हेलो
0: हेलो, यस,
2: माय नेम इज सामिला।
0: यस, बताइए।
2: हाँ, वो मूवी का नाम है जीरो, जीरो मूवी।
0: जीरो मूवी आपको अच्छी लगी थी मैम? जीरो मूवी,
2: हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट द सॉन्ग वाज सुपर्ब, मुझे अच्छा लगा। सो मूवी का नाम है जीरो।
0: जी जी जी, वेरी गुड, थैंक यू मैम।
2: जीरो नाम।
0: यस सर, यस मैम,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।

जीरो फिल्म से लिया गया था गीत अजय अतुल के बहुत ही खूबसूरत संगीत में सजा हुआ, एंड शाहरुख खान की ये फिल्म जिसमें अनुष्का शर्मा एंड कैटरीना कैफ भी थी। आई जस्ट होप कि नासा के जो भी स्टाफ है, साइंटिस्ट है, वो फिल्म ये कभी ना देखे, क्योंकि देखने के बाद उनको लगे चक्कर आ जाएंगे, उनको लगेगा कि भैया हमारी सालों की मेहनत होती है देन वी सेंड एनी बडी टू द स्पेस शिप, राइट? और यहाँ पर आपके बॉलीवुड हीरो आ जाते हैं और अपनी प्यार को मनाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए शी गिव्स हिम अ चैलेंज कि आप जाइए स्पेस शिप पर, और वो चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए हमारी बॉलीवुड फिल्म्स कितना भी हम कर ले, राइट, VFX में आगे बढ़ जाए, कहानी ठीक ठाक बना ले, कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट तो ऐसा हो ही होगा कि जहाँ पर हम कहेंगे कि बस नासा को देखे या किसी को भी देखे, वो लगेगे कि भाई ये नहीं होता, ये सिर्फ आपके और आपके बॉलीवुड में ही होता है।

दो पत्ती से लिया गया थे गीत, यहाँ तीन पत्ती ही लेकिन दो पत्ती, कृति सनन की ये फिल्म थी एंड 104.9 एफएम फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। जी हाँ, सैटरडे संडे आफ्टरनून आपको और हमारा साथ होता है, जहाँ सैटरडेज 12 से 3 के बीच में 2 बजे तक आपके लिए ये गाने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड राइट आफ्टर 2 PM, राइट आफ्टर दिस सेगमेंट, हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कम्युनिटी राउंड अप। हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की आपको जानकारी दूंगी और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी धार्मिक सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। एंड इट इज़ फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। कल भी आपसे मुलाकात होती है मेरी, जी हाँ, हमारे सैटरडेज के लिसनर शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर जानते भी है तो एक बार फिर से याद दिला देती हूँ आपको, 12 से 1 के बीच में मैं आपके लिए गुजराती रीजनल कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ। एंड राइट आफ्टर दैट जस्ट एन आवर, लेकिन फिर भी जो भी हमारी मुलाकात, जितने भी लम्हे, जितने भी पल है, सुरीले बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड इन दैट आवर वी प्रेजेंट नॉन फिल्मी सेगमेंट, जी हाँ, जिसका मतलब है कि जितने भी गाने आप सुनते हैं उस सेगमेंट में वो फिल्मी गाने नहीं होते। वेब सीरीज़ की बातें होती है, पाकिस्तानी ड्रामास के, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, प्राइवेट एल्बम्स वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें और गाने आप ही के लिए टुमारो बिटवीन 1 and 2 PM ऑन 104.9 FM। और आज बस साथ होगा आपका 2 बजे तक इस सेगमेंट में, एंड राइट आफ्टर 2 PM इट इज़ कम्युनिटी राउंड अप।

एंड वेलकम बैक, दिस इज KCMP 104.9 FM फनीशा रेडियो पे. मैं हूं नीलम, आपके साथ प्रस्तुत कर रही हूं ये कार्यक्रम जो है आपकी सेवा में हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM फनीशा, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. जी हाँ, आपसे ही बनता है ये कार्यक्रम और आप ही के लिए है लाते हम ये कार्यक्रम, जहाँ पर आपकी पसंद के कुछ बहुत ही खूबसूरत पेट्रियोटिक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल गाने होते हैं और उसी के साथ होती है बहुत सारी कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी. कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट. ये सारी बातें, ये सारे गाने, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे टिल 2 PM ऑन 104.3 PM 3 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो.

today, that is May 30th, 5 p.m. till 10 p.m., there is a bake sale and it is happening at The Sound. And all this is, you can go for cookies, brownies and many more treats. Why? Because all the sales will go towards the cancer cure. And that is happening today at The Sound. Vivayo Srinath Dam Haveli, they are having right now as we speak 2 to 5 p.m. third day of their Katha, and today they are going to have a Rukmini Vivah at 5 p.m. Tomorrow is the last day and it is between 9 a.m. till noon at Srinath Dam Haveli in Coppell, Texas. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम और आप ही के लिए लाते हैं हम ये कार्यक्रम, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि जब जितने भी आपके नॉन प्रॉफिट इवेंट है, हमारी कम्युनिटी के नॉन प्रॉफिट इवेंट्स है, वो हम आपके लिए पहुँचाए और यहाँ पर लाए ऑन 104.9 FM फॉर एशिया रेडियो एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM. Mahabodhi International Buddhist Center is presenting grand opening ceremony. Ji haan, and they are inviting you all to the inauguration of the first Mahabodhi Society branch in USA. And it is happening on Saturday, July 4th, 9 a.m. till 5:30 p.m. in Garland, Texas. Once again, the date is July 4th, 9 a.m. till 5:30 p.m. अगर आप भी, आपके जो भी संस्था है, आपकी धार्मिक हो संस्था, सामाजिक संस्था, लेकिन आपके नॉन प्रॉफिट इवेंट्स है जो कम्युनिटी के लिए आप प्रस्तुत करते हैं, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रमोट दोज इवेंट्स, प्लीज डू सेंड दैट टू मी neelam@funasia.net. बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, विल ट्राई टू प्रमोट दोज इवेंट्स ड्यूरिंग दिस आवर ओनली. यस, यही एक एक्सक्लूसिव वी हैव दिस सेगमेंट एवरी सैटरडे ऑन 104.9 FM.

कुछ आपकी पसंद के पैट्रियोटिक गाने, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल, ये सारी बातें टिल 3 PM ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो फन पिज्जा किचन की। चलिए आपको मैं थोड़ी सी याद दिला दूं, अगर आप अभी तक नहीं गए तो क्या किया, ज़रूर जाइएगा। इट इज़ ऑफकोर्स लोकेटेड इन फ्रिस्को एज वेल एज इन कॉलोनी। आप वेजिटेरियन है तो वहाँ पर जा सकते हैं फॉर आचारी पनीर पिज्ज़ा, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि तंदूरी चिकन पिज्ज़ा एंड अलॉन्ग विद डैट मैनी मैनी स्पाइसी मैजिक

गए तो क्या किया, ज़रूर जाइएगा। इट इज़ ऑफ कोर्स लोकेटेड इन फ्रिस्को एज वेल एज इन कॉलोनी। आप वेजिटेरियन है तो वहाँ पर जा सकते हैं फॉर आचारी पनीर पिज्ज़ा, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि तंदूरी चिकन पिज्ज़ा एंड अलॉन्ग विद डैट मैनी मैनी स्पाइसी मैजिक फ्लेवर पिज्ज़ा। ये सारी बातें कहाँ पर, एट फन पिज्ज़ा किचन। और एक कहानी मैं आपके लिए, कभी कभी जो भी बातें ऑफकोर्स कम्युनिटी की तो हम बातें करते ही रहते हैं हमारे इवेंट्स की, अपकमिंग इवेंट्स एक्टिविटीज़ की, राइट। लेकिन फिर भी कभी कभार हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ इंस्पिरेशनल कहानियाँ भी लाते हैं। तो एक आपको कहानी मैं बताऊँगी लेकिन इस गाने के बाद ऑन 104.9 FM।

कर दो करम 104.9 FM Fun Asia Radio. चलिए जाते जाते एक बहुत ही छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहूँगी. और जैसे कि कहा, मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में हमारी बिल्कुल कोशिश होती है दोस्तों कि कुछ गाने इंस्पिरेशनल हो, उसी के साथ कुछ बातें भी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल हो. तो कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक कलाकार रहता था जो मूर्तिकार था, और उसका नाम था राघव. सो मिट्टी और पत्थरों से वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था, इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखे बस लगता था कि क्या बात है. तो वो मूर्ति बनाते बनाते उसमें घमंड आ गया था. उसे लगता था कि उस ये गांव, ये कस्बे का वो सबसे बड़ा कलाकार है और कोई इतनी खूबसूरती से मूर्ति बना ही नहीं सकता. और इसीलिए वो जो भी दूसरे भी कोई कलाकार होते थे उनको बहुत ही नीचा समझता था. एक दिन इस गाँव में एक मशहूर बुज़ुर्ग संत आ गए. तो राघव ने, इस कलाकार ने, अपनी सबसे बेहतरीन जो मूर्ति थी वो लेकर उसके पास गया और घमंड से बोला कि देखिए महाराज, पूरी दुनिया में आपको ऐसी मूर्ति नहीं मिलने वाली, क्या आपने कोई कमी दिखती है इसमें? संत ने बहुत ही धीमे से मूर्ति को ध्यान से देखा, थोड़े मंद मुस्काए और बोले कि राघव, कला तो सचमुच अद्भुत है, लेकिन तुमने कभी देखा है कि इस मूर्ति के दाहिने हाथ की उंगली, जो दाहिने हाथ की छोटी सी उंगली होती है, वो आपने थोड़ी सी बड़ी बना दी है. जो हमारी जो छोटी उंगली होती है तो इतनी छोटी होती है, लेकिन देखिए उसमें थोड़ी सी बड़ी उंगली है, उसे और बारीक तराशते तो वो अमर हो जाती. बस फिर क्या था, तब वो राघव का घमंड टूट गया. उसने संत के चरणों में गिरकर अपनी गलती मान ली और उसे समझ में आ गया कि देखिए, ज्ञान और कला का कोई अंत नहीं होता. जहाँ हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी बात भी हम भूल जाते हैं, तो वही बात है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमसे छूट जाती है. और इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए. तो चलिए चलते चलते बस मैं इतनी कहूँगी कि घमंड को समय के थपेड़ों से एक दिन में ही, लेकिन एक लम्हा लगता है टूटने के लिए. तो हमें हमेशा कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम ऐसे कभी नहीं बन सकते कि जिसे सब कुछ आता हो, कहीं ना कहीं हमें कुछ नहीं भी आता है. ऐसी बातों के लिए सुनते रहिए Fun Asia Radio एवरी सैटरडे बिटवीन 2 एंड 3 PM ऑन 104.9 FM विथ मी योर होस्ट नीलम.

What a beautiful song. And this is a Tamil song taken from the film Enemy. Swagat karti hoon tamam sunne walon ka. Thank you so much for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. Aur har Saturday ko 3:30 baje se lekar 5 baje tak to definitely puri community ko hum ek saath kar dete hain with boli pyar ki. इस यूनिक सेगमेंट में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के गाने नहीं बल्कि तमाम रीजनल साउथ एशियन लैंग्वेजेस के गाने सुनवाए जाते हैं और वो भी आपकी रिक्वेस्ट पर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ आपको बोली प्यार की सेगमेंट में, जिसमें बहुत प्यार से आपके फेवरेट रीजनल सॉन्ग्स प्ले किए जाएंगे. All you have to do is call us at 972-235-5555. It is 37 minutes past 3 on this 30th of May 2026. Mahina khatam ho chala hai, lekin ek naye maah ka aagaaz hoga. And I hope that new month brings you lots of happiness and joy. तो जनाब रेडी हैं हम आपकी रिक्वेस्ट के लिए. अब आपका गाना चाहे गुजराती में हो या सिंधी में, पश्तो में हो या पंजाबी में, मलयालम या तेलुगु भी हो सकता है, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज दैट यू स्पीक, भोजपुरी या हरियाणवी, पहाड़ी या कोंकणी, वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, वॉट एवर इज योर मदर टंग, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल 972-235-5555. बस एक ही शर्त है और वो ये कि हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर पाएंगे. सो ये था पहला गाना जो कि तमिल लैंग्वेज में था. एंड आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सराइकी सॉन्ग. एंजॉय.

0: let's
1: Hello.
0: see. Okay, Tir Chala Ke. All right, let me see if I can find that song for you. I will play it. And कहाँ से कॉल कर रहे हैं रतन आप?
1: बॉर्नहम से.
0: ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गाना. एंजॉय.
1: थैंक यू.

0: रतन जी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम ये मैथिली सॉन्ग एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट बोली प्यार की. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विद यू टिल 6 PM. हाउएवर बोली प्यार की विल ओनली कंटिन्यू टिल 5 PM. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. अनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: आप हमें सुन सकते हैं?
0: आई एम सॉरी.
1: हेलो,
0: आई कैन हियर यू. यस, आई कैन हियर यू. मुझे आपकी आवाज आ रही है. क्या नाम है आपका?
1: अनामिका.
0: अनामिका, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: नेपाली.
0: नेपाली सॉन्ग, ऑलराइट. क्या नाम है आपके गाने का?
1: जिम जिम फ्रॉम बियॉन्ड.
0: जुन जुन.
1: जिम जिम.
0: जिम जिम, ओके. जे आई जे एम.
1: जी, जे एच आई एम.
0: ओके. और आपने मूवी का नाम बताया या बैंड का नाम, वो बियॉन्ड जो बोली आप?
1: सो बियॉन्ड द सिंगर का नाम है.
0: बियॉन्ड सिंगर का नाम है. ओके. जिम जिम जिम आखा.
1: नहीं, सिर्फ जिम
0: जिम जिम. ओके, इसका मतलब वैसे क्या होता है?
1: जिम जिम मतलब छोटी छोटी आंखों वाली.
0: ओके, छोटी छोटी आंखों वाली. और सिंगर का नाम आपने बोला है बियॉन्ड, राइट?
1: जी, बी ई वाई एन डी.
0: B-E-Y, okay. I think I found it. All right, here is your Nepali song. Or Anamika, kahan se call kar rahi aap?
1: Allen se.
0: Allen se, all right. Here is your song. Enjoy.
1: Thank you.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
17: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
18: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
17: सच में बिल्कुल घर जैसा.
18: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: That was Dhaga Dhaga. What a beautiful song. Marathi language mein tha ye gana. If you've just tuned in, aap sun rahe hai program Dil Se. Paise to kano se sun rahe hai, lekin program ka naam hai Dil Se. Main hu aapki host, aapki dost Amreen Asnat. I'll be with you till 6 p.m. It is 7 minutes past 4 aur ye hai hamara segment Boli Pyar Ki, jisme Urdu, Hindi, English ka gaane nahi, balki aapki matribhumi, regional language, मदर टंग लैंग्वेज के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं. ऑफ कोर्स रीजनल सॉन्ग्स ओनली फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 972-235-5555. सो फार हमने आपको सुनाया मराठी गाना, तमिल सॉन्ग, सराइकी सॉन्ग, बंगाली गाना भी सुना और इसके अलावा एक मैथिली गाना भी सुना और नेपाली गाने भी हमने आपको सुनवाए. बस एक ही शर्त है सेगमेंट की, वी प्ले ओनली टू सॉन्ग्स per language and based on that ab hum Nepali gaano ki request nahi le payenge. This part of Boli Pyar Ki is brought to you by Page 3 Eatery. They have some great fusion food for you aur main personally wahan ja chuki hu. Badi achhi ambiance hai aur khana bhi bahut acha hai. It's like a different taste, you know. It's not like the run of the mill. Aap jahan bhi desi restaurants mein jaye wahi butter chicken, wahi same, you know, palak paneer and everything. They've got their own unique menu and different type of items that you can order, and they all taste very good too. You don't have to take my word. You know, try it out yourself. Brunch, lunch, dinner, whatever, whenever you want to go. Akele jana chahte hain, akele jaye. Friends ke saath, family ke saath, mujhe le jaye. I mean, try it out, right? That's Page 3 Eatery, right at Hub 121. Phanisha Radio, you're on the air. Aapka naam?
1: Hello.
0: Hello,
1: hi,
0: G.
1: This is Harish.
0: Ji, Harish ya Harish?
1: Harish without H.
0: Oh, अच्छा अरीश. ओके ठीक है अरीश. बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मुझे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का गाना सुनना है.
0: छत्तीसगढ़ी, ओके. कि कोई नाम नहीं होता उस लैंग्वेज का क्या? बच्चा छत्तीसगढ़ी ही बोलते हैं?
1: जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है.
0: अच्छा, और क्या नाम है गाने का?
1: गाने का नाम है बिलासपुर माँ बवाल हो गे रे.
0: बिलास, ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई. अच्छा, और ये किस लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है?
1: ये मिक्स है हिंदी, उड़िया, मराठी. सिंस हम छत्तीसगढ़ में बॉर्डर शेयर करते हैं एमपी का, महाराष्ट्र का एंड उड़ीसा का, तो वहां से मिली जुली लैंग्वेज है ये एक.
0: ओके ओके, आई थिंक आई फाउंड इट. एक्चुअली पता है मजे की बात क्या है, बिलासपुर को लेके 3-4 गाने थे In case you didn't know. हाँ, लेकिन ये मुझे वो क्या है, बवाल वाला मिल गया गाना. So here you go. Here is your song. Enjoy.
1: Thank you.

0: यू नो सच में एक वेडिंग वाला यू नो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी इस गाने ने. रियली लाइक्ड इट. ग्रेट सॉन्ग बाय गीता रबारी. 24 मिनट्स पास्ट 4. अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि अगर आपने कॉल की है और आप होल्ड पर हैं, देयर विल बी अ मिनिमम ऑफ 5 to 10 मिनट्स होल्ड टाइम. सो प्लीज बी पेशेंट. आई विल फॉर श्योर आंसर योर कॉल एंड ट्राई माय बेस्ट टू प्ले योर सॉन्ग, स्पेशली अगर ऑलरेडी प्ले नहीं किया जा चुका. नाउ व्हाट दैट मींस इज कि अगर उस लैंग्वेज के दो गाने ऑलरेडी हो चुके हैं, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल. सो फार हमने मराठी के दो गाने, गुजराती के दो गाने और दो नेपाली गाने प्ले किए हैं, यानी कि इन तीन लैंग्वेजेस की और रिक्वेस्ट हम नहीं लेंगे. इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज है तो यू वेलकम टू कॉल 972-235-5555. फनीशा रेडियो, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग पेशेंटली. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो जी.
1: हेलो
0: लकी, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग. और बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: कुमाऊनी भाषा, उत्तराखंड से है.
0: कुमाऊनी, ओके. और गाने का क्या नाम है?
1: गुलाबी शरारा.
0: गुलाबी शरारा है आपके पास? मेरे पास तो है. ऑरेंज है. चलो कोई नहीं, ठीक है. हम फिर भी वो वाला ऑरेंज चला रहा है पहन के इस गाने पे डांस कर सकते हैं कि नहीं?
1: Exactly.
0: Okay, ठीक है. थैंक यू फॉर योर कॉल. कहाँ से कॉल करेंगे?
1: फ्रिस्को से.
0: फ्रिस्को से. ऑलराइट, थैंक यू. सो आई गेस अ लॉट ऑफ फ्रिस्को पीपल आर ट्यून्ड इन.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: Aaja meri gaadi mein baith ja.
3: Baith jaau? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
4: Wo thoda overheating tha.
3: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
7: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct's made to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
10: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
11: Welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. Main hoon aapki host, aapki dost, Amreen Hasnat. I'll be with you till 6 p.m. Filvak studio ki ghadi mein 4:34 hue hain. That is 34 minutes past 4. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से और इस वक्त पेश किया जा रहा है आपके लिए रीजनल लैंग्वेजेस सॉन्ग्स का सेगमेंट बोली प्यार की जिसमें हम आपको सुनवाते हैं हिंदी उर्दू इंग्लिश के गाने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने वो भी आपकी रिक्वेस्ट पर नाउ वन थिंग इज देयर दो देयर इज गोइंग टू बी अ 5 to 10 minutes whole time when you call in this segment. Lekin is baat ki bhi guarantee hai ki aapki farmaish zarur puri ki jayegi. So you just need to be a little patient. All right, 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो.
6: हेलो
11: जी, आप ऑन एयर हैं. आपका
6: नाम भावना.
11: भावना, भावना. बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
6: राजस्थानी.
11: राजस्थानी. ओके, और गाने का नाम क्या है?
6: मीठी बाता तेरी.
11: फिर से बोलिए.
6: मिश्री सु मीठी बाता तेरी. मिश्री सु मीठी बाता तेरी.
11: ओके, आपने इतनी तेजी से बोला वो मेरे ऊपर से गुजर गया. पहला वर्ड आहिस्ता से बोलिए.
6: मिश्री.
11: मिश्री. ओके, मिश्री
6: या
11: से मीठी बाता तेरी. ओके ठीक है. आई विल प्ले. इज इट कॉल्ड बन्नी? इज दैट द नेम ऑफ द सॉन्ग?
6: यस.
11: ओके ठीक है, हम प्ले करते हैं. बल्कि वही बात हम कह रहे थे ना कि कई दफा ऐसा होता है कि गाने का नाम कुछ होता है पर लोग उससे कुछ और समझते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हिंदी गाना है ना, आंखें तेरी कितनी हसी, और उस गाने का नाम एक्चुअली है मौला मेरे. पर जब भी लोग फोन करते हैं ना, दे एक्चुअली से वो आंखें तेरी वाला गाना लगा दे. आंखें तेरी से इतने सारे गाने शुरू होते हैं इन दीज टू वर्ड्स कि इट्स हार्ड टू फिगर आउट विच सॉन्ग दे आर रिक्वेस्टिंग. I guess this was one of those songs. So, ma'am, is gaane ka naam hai Banni. Here you go. Here's your Rajasthani song.

0: Mishri se meethi bata thari. This was the Bunny song. I hope you guys enjoyed it. Aaiye chalte hain next caller ki taraf. Let's find out unhe kaun si bhasha ka sunna hai gana. And let me quickly recap ke kaun kaun si languages ke gaane hum aapko sunwa chuke hain. Tamil, Saraiki, Bangla, Maithili, Nepali, Marathi, Chhattisgarhi, Gujarati, Komoni and Rajasthani. Ab ye bhi bata dun ke do Gujarati gaane, do Marathi gaane, do Bangla songs aur do Nepali songs chunke already ho chuke hain, in char languages mein hum aur requests nahi le payenge. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Hello, Gaurav Sharma.
0: Ji Gaurav, kahiye kaun si language ka gaana request karenge?
1: हरियाणवी.
0: हरियाणवी. और क्या नाम है आपके गाने का?
1: प्यार तेरे ते.
0: प्यार तेरे ते या यार तेरे ते?
1: प्यार. प्यार,
0: प्यार तेरे ते. ऑलराइट. और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें गौरव?
1: प्रिंसटन.
0: प्रिंसटन. ऑलराइट. ये हम प्ले करते हैं आपके लिए. ये किसका गाना है, किसने गाया ये? जतेंद्र शाह.
1: बिंटू पाबरा.
0: बिकॉज आई फाउंड प्यार तेरे दा या प्यार तेरे क्या आपने ते राइट
1: प्यार तेरे ते.
0: प्यार तेरे ते. ओके. आई एम नॉट फाइंडिंग अ सॉन्ग दैट स्टार्ट्स विद दैट. आई एम फाइंडिंग एवरीथिंग एल्स. आई एम फाइंडिंग प्यार तेरे दा असर. आई एम फाइंडिंग प्यार लेट्स सी व्हाट एल्स दूजी प्यार वे आर समथिंग लाइक दैट.
1: एंड देन इफ यू नॉट
0: सिंगर का सिंगर का नाम फिर से बताइए.
1: बिंटू. BINTU. बिंटू.
0: Bintu Pabra. Okay, let's see if I'll find it by name. I think I got it. All right, ye raha aapka gana. Thank you so much for your call. Sunte hain ab hum ye Haryanvi song. Enjoy. Nat bhidke fatafat bhidke fatafat bhidke

0: और ये था हमारा हरियाणवी सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु ओन convenience stores or gas station, we've got a great news from Ravi Imports Warehouse. They are going to have a great summer kickoff. So mark your calendar. It's going to be June 3rd and 4th. And subah 9 baje se lekar sham ke 5 baje tak, the entire warehouse is going to be turned into a tropical experience. They're going to have some crazy deals, new product launches, and free gifts all day long. You get to meet vendors, discover bestsellers, and, you know, it's a setup that you will be amazed to see. So, yaad rakhiye, Ravi Imports Warehouse, June 3rd and 4th. Now, they're located on 11029 Harry Hines Boulevard in Dallas. Ab chalte hain next caller ki taraf. Panisha Radio, aap on air hain, aapka naam?
1: Shoaib.
0: जी शोएब साहब, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: हम सुनना चाहेंगे सिंधी लैंग्वेज का.
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: नाम है सिंधी टोपी अदरक वारो.
0: सिंधी टोपी. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: लुइसविल से.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये रहा आपका सिंधी गाना, एंजॉय.

0: 20 years of event management experience. चाहे कॉन्सर्ट हो, छोटी सी पार्टी हो, बड़ी सी पार्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी मेटिकुलस, वेरी डेडिकेटेड एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड, सो आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट. कॉल मी एट 214-725-7466. एंड ऑफकोर्स अभी कॉल मत कीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ, ऑन एयर हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ. फनेश रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो.
1: हेलो,
0: जी आप ऑन एयर हैं? कौन बोल रहे हैं?
1: पार्थ.
0: ओके, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: ओडिया लैंग्वेज.
0: ओडिया लैंग्वेज. हाँ, मैं सोच रही थी आज उड़िया के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई. बताइए गाने का नाम.
1: रंगबती.
0: रंगबती. आप तो मैं भी प्रो हो गई हूँ भाई हमारे उड़िया सॉन्ग्स में. आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर आप?
1: मैं अरविंग से.
0: अरविंग से. ऑलराइट, थैंक यू. हियर इज योर सॉन्ग.
1: थैंक्स.
0: आई थिंक दिस इज द ओरिजिनल, मे बी द फोक वर्जन ऑफ

0: सुन रहे थे आप ये उड़िया सॉन्ग पार्थ की रिक्वेस्ट पर ऑन बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड वी ओनली हैव लाइक 5 मिनट्स टू गो। लेट्स सी आप और कितने गाने प्ले कर पाएंगे। फनीशा रेडियो पर आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: मेरा नाम रविशंकर हुआ
0: जी। सर कहिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: भोजपुरी गाना सुनेंगे मैम।
0: भोजपुरी गाना, क्या नाम है आपके गाने का?
1: लागी नहीं छूटे रामा, ये फिल्म का नाम है, लता मंगेशकर जी का गाना है।
0: लागी नहीं छूटे रामा लता जी ने गाया है
1: जी मैडम।
0: ओके,
1: जी
0: पुराना
1: जी
0: गाना है। हाँ
1: यस मैम, यस मैडम।
0: ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: प्लानर से कॉल कर रहे हैं मैम।
0: थैंक यू फॉर योर कॉल। ये रहा आपका गाना, नया हो या पुराना, रीजनल लैंग्वेज का होगा तो हम जरूर प्ले करेंगे।
2: लाल लाल ओठवा से बै

0: झूठे रामा भोजपुरी भाषा में सुन रहे थे आप ये गाना. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, एंड आई थिंक दिस इज प्रोबेबली गोना बी आवर लास्ट कॉलर फॉर टुडे. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: आशा
0: जी. आशा जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: एक पंजाबी गीत है.
0: बताइए क्या नाम है?
1: तेरा तेरे बिना ना गुजारा है.
0: तेरे बिना ना गुजारा, आपको पता है किसने गाया?
1: नाम याद नहीं है.
0: ओके, बट यू आर श्योर के पंजाबी गाना है, हिंदी सॉन्ग नहीं है?
1: गीत तो पंजाबी लग रहा है.
0: अच्छा ठीक है, चलिए हम प्ले करते हैं. और आशा कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: लुइसविल.
0: लुइसविल, ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग.

0: And ladies and gentlemen, that was the last song for Boli Pyar Ki.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho, या Parle G बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
9: चिकन बनाना,
10: चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
14: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
15: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
15: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
17: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM. और अब वक्त हुआ है रेडियो अंताक्षरी का. रेडियो अंताक्षरी एक अलग टाइप की गेम है जिसमें के गानों को गानों से कनेक्ट तो करना है, लेकिन आपके लिए गाना जरूरी नहीं. आमतौर पर जब लोग अंताक्षरी का नाम सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि डेफिनेटली किसी को गाना गाना पड़ेगा. एंड यू नो हाउ दे से नॉट एवरीवन नोज हाउ टू सिंग एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड आई कांट. एंड दैट्स फाइन इफ यू डोंट नो हाउ टू सिंग, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट. बट यू नीड टू नो योर बॉलीवुड म्यूजिक, बिकॉज इस अंताक्षरी गेम में हम एक गाने को दूसरे गाने से कनेक्ट करते हैं बाय अ वर्ड एज वेल एज द टेम्पो. यानी कि आप एक फास्ट गाने को स्लो से कनेक्ट नहीं कर सकते, पर स्लो स्लो से या उससे ज़रा सा फास्टर रिदम के गाने के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. Now we had Zimran call in for a request, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हीं का गाना हम use करें हमारी आज की रेडियो अंताक्षरी segment के लिए. So we're going to go ahead and play this as the first song, और उसके बाद जब मैं अगला गाना play करूँगी तो आपको हमारा format समझ में आ जाएगा. इस गाने में आपको इनाम नहीं, लेकिन आप के suggest किए हुए गाने मिलेंगे. As in आप जब एक गाना सुनकर एक दूसरा गाना सजेस्ट करेंगे जो उस गाने से कनेक्ट होता है, तो वो आपका गाना हुआ, है कि नहीं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज हम इस गाने से, विच इज फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो.

फिर रूपती रानी टेकन फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो. और चूंकि हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी, आइए कनेक्ट करते हैं इसे अगले गाने के साथ.

You're listening to Radio Antakshari, जिसमें गाने से अगले गाने को कनेक्ट किया जा रहा है, टेम्पो एज वेल एज वर्ड्स, सिर्फ एक लफ्ज का कनेक्शन.

taken from the film Jab Tak Hai Jaan. That was GRA. And this song, Shah Rukh Khan and Anushka Sharma par picturized kiya gaya tha. You are listening to Dil Se. I'm your host, Amreen Hasnat. And segment ka naam hai Radio Antakshri, जिसमें हम गानों को गानों से connect कर रहे हैं, वो भी आपकी मदद से. All you have to do is call and suggest a song that you think connects or links to the previous song. 972-235-5555 is हमारे studio का number, and I do have a giveaway from Desi Mandi. And everyone knows what Desi Mandi is, right? It's one of the biggest grocery stores in DFW, and they're giving you a gift hamper, yani ke a basket full of essential groceries from Desi Mandi in Louisville. Wo lene ke liye aapko wahan jana padega. So win karne ke liye aapko mere sawal ka jawab dena padega. Kuch der pehle hamara segment chal raha tha boli pyar ki. Aaj ke segment mein maine 14 regional languages ke gaane aapko sunwaye. Some of them were repeated, as in multiple songs of the same language, but 14 distinctive languages were played, as in songs were played. अब फिर मैं सोच में पड़ गई कि साउथ एशिया में, एज इन जस्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ ही तकरीबन 25-30 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, जिनके बारे में सबको पता है. सो आई वंडर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं या रिकॉर्डेड हैं, लिस्टेड हैं टू बी वाइडली यूज्ड और स्पोकन अक्रॉस द कंट्री. So, I thought, क्यों ना आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए. So, आप बताइए कि US में कितनी languages बोली जाती हैं. Give me a rough estimate, ठीक है? And of course, I have the answer, लेकिन मुझे आपसे जानना है. और सही जवाब देने पर आपको मिलेगी देसी मंडी की गिफ्ट बास्केट. पर ख्याल रहे कि अगर आप पहले विन कर चुके हैं तो यू विल नॉट क्वालिफाई, यू विल ऑटोमेटिकली बी डिसक्वालिफाइड, क्योंकि आपका नाम नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास, राइट? सो मेक श्योर यू गिव समवन एल्स अ चांस, समवन एल्स द अपॉर्चुनिटी टू विन व्हेन यू कॉल 972-235-5555. और ये गाना हमने लिंक किया है शाहरुख खान की एक और दूसरी फिल्म के गाने से.

पद्मावत फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप नीति मोहन की आवाज में. दिस वॉज नैनो वाले ने. एंड वी बीन कनेक्टिंग वन सॉन्ग टू द नेक्स्ट, सिमिलर टेम्पो, और उसमें कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा है जो दोनों गानों में सिमिलर है. जैसे कि ये अगला गाना टेकन फ्रॉम द मूवी रेड.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फिस्को में एक नया स्टोर देखा।
3: कौन सा?
2: कैरेट लेन।
3: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
2: हाँ वही।
3: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
2: देखा, ढूंढ के दिया ना।
4: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
5: अरे वो केक आया क्या?
2: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: डेकोर वाले को कॉल किया।
2: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
7: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
2: ऑसम इवेंट्स?
7: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
8: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
7: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
4: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
9: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
10: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
9: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
11: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
12: Arey sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy FunAsia Radio.

और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जलेबी फिल्म से लिया गया. ये गाना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड दिस इज रेडियो अंताक्षरी, जिसमें एक गाने से अगला गाना कनेक्ट किया जा रहा है.

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप तो

ध्वनि भंशाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना वास्ते। दिस वॉज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट रेडियो अंताक्षरी, जिसमें हम एक गाने को दूसरे गाने से कनेक्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग श्योर के गानों का टेम्पो भी मैच करता हो और कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा हो जो पिछले गाने को अगले गाने से कनेक्ट करता हो। जो अगला गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ उस पर मैं बहुत यकीन रखती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट ट्रूली इज़ आ फेट व्हेन समथिंग हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 10 महीने पहले जब मैं फनीशिया छोड़कर गई थी तो मुझे नहीं मालूम था कि वापस लौट कर आऊंगी या नहीं, लेकिन हमारी किस्मत में मिलना था सो मुलाकात हुई और अब होती रहेगी हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM। दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर येट अनदर एडिशन ऑफ दिल से।

आ गई भाई, आ गई। आपने इतने प्यार से जो बुलाया कि आओ ना, तो आ गई मैं। मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 FM। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 6:10 और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ लगातार अगले 3 घंटे के लिए। और हम करेंगे ढेर सारी बातें, बहुत सारा मौज मस्ती और होगा ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ, आज का जो शो है ना वो डेडिकेटेड है वन सॉन्ग वन स्टोरी के नाम। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन आइकॉनिक गानों की जो सिर्फ चार्ट बस्टर्स ही नहीं हुए बल्कि उनके पीछे छुपी हुई जो कहानियां हैं वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। और कुछ गाने तो एक्सीडेंट से हिट हुए, कुछ को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में एक्सेप्ट हुए, और कुछ ने तो स्टार्स की किस्मत ही बदल डाली। मतलब वो स्टार्स स्टार्स बने आफ्टर द सॉन्ग। बताएंगे ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स और उनके पीछे की स्टोरीज के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अच्छे अच्छे गाने।

अब लव स्टोरी का तो नहीं पता मुझे कि वेदर यू हेट इट और यू लव इट, लेकिन आज का जो हमारा थीम है ना, वन सॉन्ग वन स्टोरी, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोना लव इट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सारे ही चार्ट बस्टर्स हिट सॉन्ग्स के पीछे की कहानियों के बारे में. और आज का जो पहला सॉन्ग है डिस्कशन का, वो है 1 2 3 फ्रॉम द मूवी तेजाब. जी हाँ, मतलब आप ये जैसे ये सॉन्ग सुनते हैं, ये 1 2 3 नंबर सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि माधुरी दीक्षित जो है वो कमाल का ड्रेस पहन के मस्त अच्छा सा प्यारा सा डांस कर रही है. और ये गाना एक्चुअली माधुरी दीक्षित के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था. वो इनकी करियर का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है. मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले माधुरी दीक्षित को बहुत लोग नहीं जानते थे एज एन एक्ट्रेस और एज अ गुड डांसर, लेकिन जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ 1 2 3, उसके बाद तो हर गली हर मोहल्ले में सिर्फ माधुरी ही माधुरी है. मतलब सबकी फेवरेट अदाकारा बन गई वो, और हर टीवी शो, हर परफॉर्मेंसेस, हर टीवी एड्स जो कि वहाँ पे फेमस हुआ करता था उस टाइम पे, उसमें माधुरी ही माधुरी नज़र आती थी. और माधुरी जी ने एक शो पे बताया कि उन्होंने इस सॉन्ग के लिए, इस डांस के लिए लगातार 10 दिन तक रिहर्सल की थी ताकि वो परफेक्ट हो सके. और ये गाना जो है उस ज़माने का वायरल ट्रेंड था जब सोशल मीडिया नहीं था. आजकल तो वायरल होना बहुत ईजी है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया है, और कुछ भी पसंद आता है तो बिल्कुल आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते थे. और इस गाने के लिरिसिस्ट थे जावेद अख्तर जी, वो भी काफी फेमस हुए थे इस गाने से. और ये गाना इतना मशहूर हुआ कि अभी हाल फिलहाल में ही बागी 2 में इस सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन भी बना. और अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए.

0: ये सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था सफी ने। आई होप सफी आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा। आज का जो हमारा थीम है वो है वन सॉन्ग वन स्टोरी, और हम बेसिकली बातें कर रहे हैं कि हर सॉन्ग्स के पीछे कैसी कैसी कहानियां होती थी और जो उनको और ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। और अभी हम जाने वाले हैं एक ब्रेक पे, बट ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और ढेर सारी कहानियों के साथ। अभी हमने तेजाब की एक सॉन्ग की बात की विच इज 1 2 3, और मुझे बहुत सारे कॉल्स आए बताने के लिए कि अरे आपने तो ना पुराने दिनों की याद दिला दी उस ऑसम सॉन्ग की। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स अभी बाकी हैं।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
4: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
4: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
10: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: अटेंशन स्टॉल ओनर्स, रवि's समर किक ऑफ इज बैक June 3rd एंड June 4th, 9 AM to 5 PM, एंड दिस ईयर इट्स डिफरेंट। वी आर टर्निंग द वेयरहाउस इनटू अ फुल ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस विद क्रेजी डील्स यू वोंट फाइंड एनीवेयर। न्यू product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

ये जो सॉन्ग है ना छैया छैया फ्रॉम द मूवी दिल से, ये गाना एक्चुअली पहले फिल्म का पार्ट नहीं था। जब एआर रहमान जी ने ये ट्यून सुनाई थी डायरेक्टर मणि रत्नम जी को, तो वो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म में ऐड करवा लिया फटाफट। और शाहरुख खान और मलाइका अरोरा ने एक्चुअली एक मूविंग ट्रेन के ऊपर डांस किया था इस सॉन्ग के लिए विदाउट एनी काइंड ऑफ सेफ्टी हार्नेस। और छैया छैया के लिरिक्स एक सूफी पोएट से इंस्पायर्ड थे जिनका नाम है बुल्ले शाह, तो काफी फेमस था ये। और जो अगला वन सॉन्ग वन स्टोरी में हम जिस सॉन्ग की बात करने वाले हैं वो है पहला नशा। हाँ जी, मतलब सबका फर्स्ट लव एंथम तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों का तो पहला नशा ही था। और ये बॉलीवुड का पहला मेन स्ट्रीम सॉन्ग था जो ऑलमोस्ट पूरा स्लो मोशन मूव में मूड में शूट हुआ था, ताकि इसको जो है एक ड्रीमी स्लो मोशन इम्पैक्ट दिया जाए, एक मैजिकल और फ्लोटिंग इफेक्ट जो आप देखते हैं इस सॉन्ग में वो लाने के लिए एक्चुअली एक्टर्स को नॉर्मल स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ा था और घूमना पड़ा था ताकि वो ड्रीमी इफेक्ट आ सके। और ये मूवी लिया गया है जो जीता वो सिकंदर से।

और ये सॉन्ग डेडिकेट किया था हमारे प्यारे लिसनर सोहेल एंड मरियम ने मेरे लिए, क्योंकि मेरा नाम जो है वो DDLJ से इंस्पायर्ड है, सिमरन सिमी. और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है

EDLJ से इंस्पायर्ड है सिमरन सिम्मी और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 6:51 और हम बात कर रहे हैं वन सॉन्ग वन स्टोरी के बारे में। और जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है कहो ना प्यार है। जी हाँ, मतलब कितना ही प्यारा सॉन्ग है ये, जिसके बाद ऋतिक रोशन तो है, मतलब एक दिन में उनको हजारों शादी के प्रपोजल्स मिलने लगे थे, ऐसा उन्होंने बताया था। आफ्टर दिस सॉन्ग वो ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे। फ्रॉम दी मूवी कहो ना प्यार है, यही उनका टाइटल ट्रैक है इस सॉन्ग का। और एंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स और एक छोटे से ब्रेक के बाद।